मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री
1: मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास

0: और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रही हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी अंबिका प्रसाद की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में ब्रह्मानंद की ये भक्ति रचना।

पंडित राजन साजन मिश्र के स्वर में अभी आपने सुना तुलसीदास का भक्तिपद। लीजिए अब सुनिए हंसराज हंस के स्वर में रवि चोपड़ा का ये भजन।

0: इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्रीमती प्रकाश वोरा का है।
1: मानव जीवन में मानवीय नैतिक गुणों का होना ही मनुष्यता है। मानवता का प्राण नैतिकता है। आज मनुष्यों की संख्या तो भरमार है, परंतु उसके साथ नैतिकता की संख्या तो शून्यता की ओर ही बढ़ती जा रही है। बिना नैतिकता मानव कर्म किस ओर बढ़ रहे हैं, वे हमारे सामने नित्य प्रति घटती घटनाओं से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। नैतिकता बिना मानवता निष्प्राण होती जा रही है। लगता है अब तो मात्र वेंटिलेटर पर ही चल रही है, या यूं माने कि आज का मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता को स्थान देना ही नहीं चाहता। क्या महत्व है जीवन में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी का, आत्ममर्यादा, सच्चरित्रता, संवेदनशीलता, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा का, परोपकार, निर्लोभता, अनुशासन का, आदर का, निस्वार्थ स्नेहिल व्यवहार का। इन सब से मनुष्य पूर्णतः अनभिज्ञ होता जा रहा है। इन्हीं नैतिक नियमों के अभाव के कारणवश आज चारों ओर हिंसा, घूसखोरी, व्यवहार में दोहरापन यानी मुंह पर मीठा, पीठ पीछे बुराई, परिवारों का टूटना, अनुशासनहीनता, हर क्षेत्र में केवल पैसे का बोलबाला, दृश्यमान आसक्ति केवल बंधन है, हम नहीं समझते। इन्हीं सब के कारण आज चारों ओर कैसा अशांत वातावरण महसूस हो रहा है। हर बुद्धिजीवी मन में घुटन महसूस कर रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, मानव किस ओर जा रहा है, क्यों नहीं हर मनुष्य अपना आत्मविश्लेषण करता। व्यक्ति स्वयं जिस भी क्षेत्र में है, कम से कम स्वयं तो अपने से सोचे कि मैं तो अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी रखूंगा, निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा, एक आदर्श उपस्थित करूंगा। लेकिन नहीं, हर एक दूसरों के छिद्रान्वेषण में लगा है। कहा गया है कि आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। एक इकाई तो मनुष्य ही है, एक एक 11 हो जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, पर एक का कदम तो उठे नैतिक पथ पर। हम इतिहास के पन्ने खोलकर देखें तो पता चलेगा कि क्या उच्च कोटि की नैतिकता थी हमारे देश में। नैतिकता ही जीवन था,

0: वही लक्ष्य था। राजनीति के मर्मज्ञ चाणक्य राजकाज के समय ही राजकोष के खर्च का तेल दीपक में जलाते थे, और जब व्यक्तिगत बातचीत का कार्य होता था तब स्वयं के पैसों से लिए गए तेल का दीपक जला लेते थे। इतनी उच्च कोटि की ईमानदारी थी देश में, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आजकल तो अरबों खरबों के घोटाले हो रहे हैं, जहां छापा पड़ता है अथाह है संपत्ति, करोड़ों की नगद राशि प्राप्त हो रही है, और हमारा देश क्या कहला रहा है? भारत गरीब देश है। गरीबी का कारण ईमानदारी को भूलकर बेईमानी से धन कमाना है। क्या यही मानवता है? क्या ये अथाह संपत्ति साथ जाएगी मरणोपरांत? ऐसा चिंतन मनन ही नहीं रह गया है। महान चिंतक विदुर की नीतियां पढ़ने का किसी को विचार नहीं आता। संस्कृत में कितनी अधिक सूक्तियां हैं नैतिकता के पाठ पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की नजर में उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है मानो शिक्षा मात्र धनोन्मुख हो गई है। अन्यथा नीति कहती है कि परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्ठवत, यानी परस्त्री को माता समान और पराय धन को पत्थर समान समझो। ये भाव कहां लुप्त हो गए? आए दिन बलात्कार की घटनाएं, जिन्हें पढ़ सुनकर लज्जा से सिर झुक जाता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, ये सोचकर कि विश्व में गुरुपद पाने वाले हमारे भारत की देवभूमि पर ऐसी शर्मनाक घटनाएं। शक्ति स्वरूपा नारी को भोग की वस्तु समझा जाने लगा है। वहीं कुछ नारियों ने भी अपने भूषण लज्जा का मानो त्याग कर दिया है। ये सब दुष्परिणाम है जीवन से नैतिकता के लुप्त हो जाने का, नैतिकता को भुला देने का। देश में व्याप्त इस बदहाली को मिटाने के लिए हमारे जीवन में पुनः नैतिकता जागे, ये आवश्यक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्रीमती प्रकाश वोरा का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुँचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनी भविष्य के लिए वर्षा जल संरक्षण इस विषय पर जानकारी देते हुए डॉक्टर के साहू।
1: नमस्कार जम्मू किसान भाई बहनी मन, आप मन मैं आज बताऊं कि कैसे हमर छत्तीसगढ़ में वर्षा के जल प्रबंधन है वो कैसे करें, ओकर कैसे हम लाभ ले सकत हन, और जो हमर छत्तीसगढ़ में बारिश होते वो अतका होते कि हमर धान के खेती के अलावा दूसर फसल के लिए भी पर्याप्त मात्रा में बारिश होते। लेकिन आवश्यकता ये बात के है कि ओकर यदि हम सही प्रबंधन नहीं करबो तो हर 3-4 साल में हम देखथन कि हमर धान के जो खेती है ओहू में अकाल के जैसे स्थिति बन जाते है। एकर कारण ये है कि वर्षा के मात्रा तो पर्याप्त मात्रा में बारिश हम मिलते, लेकिन ओकर जो वितरण है एक गाँव में कतका पानी गिरना चाहिए ओकर सही एक नियंत्रित व्यवस्था नहीं है, वो कभू कम गिर जाते कभू ज़्यादा गिरते। तो जो हमर धान के 3-4 जो प्रमुख अवस्था है क्रांतिक अवस्था कथे, जैसे आपके ब्यासी के समय हो गए, आपके कंसा फूटे के अवस्था हो गए, दाना भरे के, फूल आए के, गभोट के, तो ये सब जो स्थिति होते वो अवस्था में यदि पानी एक बार भी पानी के कमी पड़ते या कई गाँव बोए के समय ही पानी कम हो जाते, तो ये जो पानी के कमी है वो आपके फसल के उत्पादन में बहुत विपरीत असर पड़ते, और बाद में चाहे ज़्यादा पानी गिरे ऊपर से मतलब नहीं है। तो औसतन वर्षा जो है वो तो 1200 मिलीमीटर हमर होते तो वह काफ़ी पर्याप्त है कि दो फसल लिए जा सकते। तो ये परिस्थिति में अब हमन आइए हमन किसान भाई मन ये विषय में चर्चा करबो कि वर्षा के जल प्रबंधन छत्तीसगढ़ में कैसे करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के तीनों प्रकार के जो भू परिस्थिति है, चाहे वो बस्तर के पठार हो, छत्तीसगढ़ के हमर मैदानी भाग हो, या सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्र, तीनों में जो सबसे सरल और प्रभावी तरीका है वो डबरी निर्माण। तो डबरी जो है हमर पुराना परंपरागत ढंग से हमर किसान भाई मन इला जानत हैं कि बड़े बड़े किसान मन गांव में बड़े बड़े डबरी बनाए, 2 एकड़, 4 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ के भी डबरी रहे, और ये डबरी के निर्माण वो अकाल के समय में अपन

0: गांव के आओ जो भाई किसान भाई हैं ओमन भूखमरी के शिकार ना हो करके जो वहाँ के पुराना गौटिया है जमींदार हैं माल गुजार हैं ओमन अपन बड़े किसान मन करे रहीन है और ओकर उपयोग होत रही से। लेकिन जैसे जैसे नहर या ट्यूबवेल के नलकूप के प्रचलन बढ़ीस सुविधा बढ़ीस तो डबरी के उपयोग धीरे धीरे नंदात गईस और किसान मन के खेत तक हमन वैज्ञानिक मन पहुँचेन और ये निष्कर्ष निकलीस के यदि भूमि जतका भी रकबा है जैसे 2 एकड़ 2.5 एकड़ के किसान हैं तो 8 से 10वां हिस्सा जो है ओला हम यदि अपन डबरी निर्माण के लिए निकालबो जैसे 30 मीटर बाई 30 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर गहरा अपन यदि डबरी के निर्माण करबो तो 1 हेक्टेयर के खेती में वो उपयोगी होत रही से। तो ये अनुसंधान में पाए गई तो एम का है कि जो छोटे छोटे डबरी है ओकर उपयोग से हम वर्षा जल के पानी लो में इकट्ठा कर सकत हन और ओकर बाद जब 1 या 2 पानी के कमी होगी तो वह हम सिंचाई करके ओकर जो एकत्रित जल है ओकर सिंचाई करके हम फसल बचा सक।
1: भविष्य के लिए वर्षा जल संरक्षण कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर के साहू। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन, पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे द्वारिका यादव और साथी। सुबह 9:00 सुनिएगा कथायन में कहानी मर्दा, कहानीकार होंगे श्री विजय मिश्र। सुबह 9:40 और रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उर्मिल वढ़ेरा। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगी स्वाति देश पांडे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा सुलेखा पेंडसे का गाया राग देसी में ख्याल। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अमीर खां का गाया राग दरबारी में ख्याल। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करब छत्तीसगढ़ी की सुनव, फोन संवाद और प्रस्तुति होगी प्रवीणा त्रिपाठी की। दोपहर 12:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा लोक नजनी कार्यक्रम, कलाकार होंगे भगत साहू और साथी। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया के आकर्षण होंगे, आज की बात इसमें खुद को रखें हमेशा अपडेट पर चर्चा होगी और होगा क्रम आपकी चिट्ठी और एक ही फिल्म से और होगा दीदी की सलाह, इसमें प्रेशर कुकर की देखभाल पर चर्चा होगी। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम के आकर्षण होंगे, आजकल इसमें बोलना भी जरूरी है पर चर्चा होगी। सर्जना में कहानी आप सुनेंगे और होगा क्रम इंद्रधनुष। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात में खेती माँ प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव और ओकर निदान पर चर्चा होगी। आज की सलाह में अश्वगंधा और एलोवेरा की खेती, इस पर डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पहंदा दुर्ग की सलाह आप सुनेंगे। सुरों का सफर पुराने फिल्मी नख्मों का ये फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10:00।

चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरातराज्यस्य कतिपयभागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत्स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जय

0: जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर लेकर हाजिर हूँ मैं सौम्या रिजवी। आप सभी को हमारा नमस्कार। जब आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि इंसान का दिल भी बचपन की मीठी यादों से महक उठता है। बारिश का मौसम अपने साथ अनगिनत यादें लेकर आता है जो उम्र भर जहन में ताज़ा रहती हैं। ये मौसम सिर्फ फिज़ा को खुशनुमा नहीं बनाता बल्कि दिल के कोनों में छिपे मासूम यादों को भी फिर से ज़िंदा कर देता है। बचपन का बरसात से रिश्ता बेहद ख़ास होता है। उस दौर में न किसी चीज़ की फ़िक्र होती थी और न ही जिम्मेदारी का बोझ। जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती, बच्चे खुशी से उछल पड़ते। बारिश की पहली फुहार में भीगना, पानी से भरे गड्ढों में छप छप करना और कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बहते पानी में छोड़ देना, ये सब मंजर आज भी याद आते ही चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं। इस बरसात हम केवल प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ही ना लें बल्कि अपने बचपन की उन सुनहरी यादों को भी दिल से महसूस करें। यही यादें जीवन की थकान को कम करती हैं, उम्मीद जगाती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि खुशी अक्सर उन्हीं लम्हों में होती है जिन्हें हम बचपन में जी लिया करते थे।

श्रोताओं, लोक कला की अद्वितीय स्वर साधिका पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई अब हमारे बीच नहीं रहीं। अपनी सशक्त आवाज, विलक्षण प्रतिभा और अद्भुत अभिव्यक्ति से पंडवानी को विश्व भर में प्रतिष्ठित करने वाली तीजनबाई का जन्म छत्तीसगढ़ के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पंडवानी गायन में गहरी रुचि थी। पंडवानी महाभारत की कथाओं का लोक शैली में गायन है, जिसमें गायन, अभिनय, संवाद और भाव भंगिमाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तीजनबाई की प्रस्तुति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रभावशाली आवाज़ और जीवंत अभिव्यक्ति थी। वे जब पंडवानी प्रस्तुत करती थीं तो ऐसा लगता था मानो महाभारत के पात्र स्वयं मंच पर साकार हो उठे हों। उनके हाथ में तंबूरा केवल एक वाद्य नहीं बल्कि कथा का सजीव प्रतीक बन जाता था। वे कभी भीम की वीरता, कभी अर्जुन के पराक्रम तो कभी द्रौपदी के स्वाभिमान को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती थीं कि दर्शक भाव विभोर होते थे। उनकी कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति का सशक्त दस्तावेज हैं। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों में पंडवानी की प्रस्तुति देकर विश्व को भारतीय लोक कला की अद्भुत गरिमा से परिचित कराया। उनके स्वर में लोक जीवन की मिट्टी की सौंधी महक, संघर्ष का साहस और संस्कृति का गौरव एक साथ झलकता था। पंडवानी गायन में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण और

पद्म विभूषण जैसे उच्च राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया था। तीजन पाई भारतीय लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर थीं। उनकी स्वर साधना, अथक परिश्रम और सांस्कृतिक समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। भारतीय लोक कला का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, पंडवानी गायन के लिए तीजन बाई जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। तीजन बाई को हमारा शत शत नमन।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: एपीके फाइल बहुत प्रचलित वर्ड है, जिसको एंड्रॉइड पैकेज किट के नाम से हम जानते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके मोबाइल में APK फाइल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, SMS या मेल के माध्यम से भेजते हैं, जो सामान्यतः ट्रैफिक चलान या इलेक्ट्रिसिटी बिल या शादी के कार्ड के रूप में होता है। जैसे ही आप इस प्रकार के फाइल को इंस्टॉल करते हैं, आपका मोबाइल हैक हो जाता है और आपकी निजी जानकारी स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है, जिसका उपयोग कर वह आपके साथ ठगी करता है। आप सतर्क और जागरूक बने, किसी भी प्रकार के APK फाइल को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल ना करें। आपके साथ यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट

0: cybercrime.gov.in में अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
1: आसमान से बरसती बूंदें जब पहाड़ों की बुलंद चोटियों से टकराकर झरनों का रूप धारण करती हैं, तब जलप्रपातों का मनोहारी दृश्य सभी का मन मोह लेता है। चारों ओर हरियाली की चादर, पक्षियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज़ ऐसा समा बांध देता है कि हर सैलानी उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। आधुनिक दौर में यही ख्वाहिश सेल्फी के रूप में सामने आती है, मगर अफसोस कभी कभी एक खूबसूरत तस्वीर की चाह इंसान को ऐसी गलती की ओर ले जाती है जिसका अंजाम कई बार बेहद दर्दनाक साबित होता है। आजकल हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा करने की होड़ ने लोगों में रोमांच का एक नया जुनून पैदा कर दिया है। लोग अधिक बेहतरीन और अलग फ़ोटो पाने के लिए जलप्रपातों के बिल्कुल किनारे फिसलन भरी चट्टानों पर या तेज़ बहते पानी के पास जाकर सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। यही लापरवाही दुर्घटना का कारण बन जाती है। बरसात के मौसम में जलप्रपातों के आसपास की चट्टानों पर काई जम जाती है, जिससे वे अत्यंत फिसलन भरी हो जाती हैं। ऊपर से लगातार गिरता पानी और तेज़ बहाव खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे में अगर किसी का पैर ज़रा सा भी फिसल जाए तो का मौका तक नहीं मिलता। इसलिए किसी भी सूरत में खतरनाक किनारों पर जाकर सेल्फी लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये याद रखने वाली बात है कि एक तस्वीर की अहमियत कभी भी इंसानी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। सेल्फी लेते समय इंसान का पूरा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर होता है। वो अपने कदमों, आसपास के वातावरण और पीछे मौजूद खतरों से बेखबर हो जाता है। जलप्रपात के किनारे ये गफलत जानलेवा साबित हो सकते हैं। साथ ही बच्चों को भी अकेले जलप्रपात के पास न जाने दें, उन्हें हर समय अपनी निगरानी में रखें। बरसात में मौसम अचानक बदल सकता है, कभी कभी कुछ मिनटों में पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर लौट जाना ही समझदारी है। जब भी बरसात के मौसम में किसी जलप्रपात की सैर पर जाएं, तो रोमांच से पहले सुरक्षा, शौक से पहले एहतियात और तस्वीर से पहले अपनी सुरक्षा को महत्व दें। यही अकलमंदी है, यही जिम्मेदारी है और यही एक जागरूक नागरिक का असली फ़र्ज़ भी।

स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने डिजिटल मीडिया को तेज़ी से बढ़ने वाले उद्योगों में शामिल कर दिया है। न्यूज़ पोर्टल, OTT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें न्यूनतम योग्यता कार्य के अनुसार है, जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स के लिए 10वीं या 12वीं पास संस्थान के अनुसार, BA, BMM, BJMC के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश परीक्षा

परीक्षा, इंटरव्यू या पोर्टफोलियो के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इसमें मौके हैं जैसे न्यूज़ पोर्टल, डिजिटल मीडिया हाउस, सोशल मीडिया एजेंसियां, ओटीटी प्लेटफॉर्म, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग में प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की मांग होती है। कोर्स हैं बीए इन डिजिटल मीडिया एवं मास कम्युनिकेशन, बीए इन मल्टीमीडिया एवं मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, सर्टिफिकेट इन कंटेंट राइटिंग एवं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग एवं मल्टीमीडिया। शिक्षण संस्थान हैं भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय का दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म नई दिल्ली और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर।

श्रोताओं, बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री समाधान योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इससे अब बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान कर 100% सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकेंगे। इस निर्णय से ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो लंबे समय से बकाया राशि के कारण अतिरिक्त सरचार्ज का बोझ उठा रहे थे। ऊर्जा विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ साथ सालों से लंबित बिजली बिलों का सरल, पारदर्शी और त्वरित निपटारा करना है।

श्रोताओं, हाथ से बनी चीज़ों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हैंडमेड ज्वेलरी, पर्स, होम डेकोर आइटम, गिफ्ट प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट सामग्री की मांग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बढ़ी है। अगर रचनात्मक काम पसंद है तो ये व्यवसाय घर से कम निवेश में शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले ये तय करें कि कौन सा उत्पाद बनाना चाहते हैं और उसकी बाजार में मांग कितनी है। शुरुआत में कम मात्रा में उत्पाद तैयार करें और ग्राहकों की प्रतिक्रिया समझें। गुणवत्ता, आकर्षक डिज़ाइन और उचित कीमत इस व्यवसाय की सफलता के मुख्य आधार हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकरण कराने पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता पर्याप्त होते हैं। उद्यम पंजीकरण कराना फायदेमंद रहता है। अगर वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए तो GST पंजीकरण की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑनलाइन बिक्री के लिए कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकते हैं। इस व्यवसाय में कमाई पूरी तरह उत्पाद की गुणवत्ता, डिज़ाइन और बिक्री पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है और ऑर्डर बढ़ते हैं, आय में भी अच्छी वृद्धि हो सकती है। यूनिक और हाथ से बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए ये व्यवसाय लंबे समय में लाभदायक साबित हो सकता है।

बारहवीं की परीक्षा के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कॉलेज में प्रवेश जीवन का एक नया और महत्वपूर्ण चरण होता है। यहाँ विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना पहले से अधिक ज़रूरी हो जाता है। अगर शुरुआत से ही सही आदतें अपनाई जाएं, तो सफलता की राह आसान हो जाती है। सबसे पहले नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों को ध्यानपूर्वक समझें। रोज़ निश्चित समय पर पढ़ाई की आदत डालें ताकि परीक्षा के समय अत्यधिक दबाव न पड़े। कक्षा में बनाए गए नोट्स समय समय पर दोहराते रहें और कठिन विषयों पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से चर्चा करें। कॉलेज का पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करें। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक मनोरंजन पर अधिक समय ज़ाया न करें। समय का सही प्रबंधन करें और पढ़ाई के साथ साथ खेल, व्यायाम और पर्याप्त विश्राम का भी ख्याल रखें, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और उन्हें पाने के लिए अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ लगातार कोशिश करते रहें। साथ ही अच्छे मित्रों का साथ चुनें, क्योंकि संगति का प्रभाव पढ़ाई और व्यक्तित्व दोनों पर पड़ता है। कॉलेज जीवन केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करने का अवसर होता है। इसलिए हर विद्यार्थी पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाकर पूरे मनोयोग से मेहनत करें।

श्रोताओं, बारिश का मौसम कुदरत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है। रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाएं, हरियाली से लहलहाते खेत और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू इंसान के दिल को सुकून और ताजगी से भर देती है। लेकिन ये मौसम जितनी खुशनुमा सौगातें लेकर आता है, उतना ही सावधान रहने की भी मांग करता है। ज़रा सी असावधानी कई मुश्किलें ला सकती हैं। बरसात के दिनों में घर से निकलते समय छाता, रेनकोट और अन्य ज़रूरी सामान साथ रखना चाहिए। फिसलन भरी सड़कों पर जल्दबाजी से बचना और आराम से चलना ज़रूरी है। अगर पानी अधिक भरा हो तो उसकी गहराई जाने बिना उसमें उतरना ठीक नहीं। बिजली की कड़क और चमक के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। भीगे हुए हाथों से बिजली के उपकरणों को छूना बेहद खतरनाक हो सकता है। बरसात में टूटे हुए बिजली के तार दिखाई दें तो फौरन संबंधित विभाग को सूचना दें। इस मौसम में मच्छरों, दूषित पानी और गंदगी के कारण अनेक बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है, इसलिए साफ सफाई का खास ख्याल रखें। केवल स्वच्छ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं और ताज़ा और पौष्टिक भोजन करें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छर पनप ना पाएं। वाहन चलाते समय रफ्तार पर काबू रखें, हेडलाइट का सही इस्तेमाल करें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचें। ज़रूरत पड़ने पर ही यात्रा करें और मौसम की जानकारी लेकर ही सफ़र पर निकलें। बरसात का मौसम हमें प्रकृति के उपहार का एहसास कराता है, साथ ही ये संदेश भी देता है कि ज़िंदगी में एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी सावधानी, सफाई और अनुशासन अपनाएं, तो इस दिलकश मौसम का भरपूर लुत्फ उठाते हुए खुद को, अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष

0: उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता

0: प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं द्वारिका यादव और साथी। इनके स्वर में लीजिए अब सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं द्वारिका यादव और साथी। इनके स्वर में लीजिए आप सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे द्वारिका यादव और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराय पाली केंद्र है।

हम आपको याद दिला दें, रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनव। फोन संवाद और प्रस्तुति होगी प्रवीणा त्रिपाठी की।

शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम के आकर्षण होंगे। आजकल इसमें बोलना भी ज़रूरी है पर चर्चा होगी। सर्जना में कहानी आप सुनेंगे और होगा क्रम इंद्रधनुष।

दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया के आकर्षण होंगे। आज की बात इसमें खुद को रखें हमेशा अपडेट पर चर्चा होगी और होगा क्रम आपकी चिट्ठी और एक ही फिल्म से और होगा दीदी की सलाह। इसमें प्रेशर कुकर की देखभाल पर चर्चा होगी। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा लोक रंजनी का कार्यक्रम। कलाकार होंगे भगत साहू और साथी

साइकिल के पैडल पर पैर चलाते हुए अपने कार्यालय श्रम भवन की ओर बढ़ रहा था। पहाड़ी पर निर्मित श्रम भवन की ऊंचाई को वह आज जल्द ही लांग जाना चाह रहा था। दरअसल आज से ही कार्यालय आरंभ होने का समय आधा घंटा पूर्व कर दिया गया था, अर्थात 11 बजे से 10:30 बजे कर दिया गया था। मर्दा जब श्रम भवन के करीब पहुंचा तो घड़ी 11:15 बजा रही थी। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि पूरी शक्ति लगाकर भी घड़ी के कांटे को वह आगे निकलने से नहीं रोक सका। नियम और समय का पाबंद मर्दा अपने आप को घड़ी के कांटे से हारा हुआ पाकर अपराध बोध महसूस कर रहा था। भारी मन लिए हुए लंबी लंबी सांसें खींचते हुए वह श्रम भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचा। तब सुरक्षा निरीक्षक चंद्रवंशी ने उसे वहीं रोक लिया। उनके साथ ही मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा सैनिक कालीचरण ने मर्दा के लेट आने का कारण पूछना आरंभ किया। जब उसने कार्यालय लेट आने का कारण पूछा तो मर्दा के बजाय सुरक्षा निरीक्षक चंद्रवंशी ने हंसते हुए कहा, अरे क्या कारण हो सकता है कालीचरण? असल में मर्दा भाई जरूर किसी जरूरतमंद को रक्त देने गए रहे होंगे। कालीचरण, तुम शायद इन्हें जानते नहीं, मर्दा भाई अनेक लोगों को रक्तदान कर चुके हैं। ऐसे दानदाताओं की गिनती तो लेट आने वालों में तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। इन्हें बेरोक टोक आने जाने दो। मर्दा का असली नाम मंजीत था, पर रक्तदान देने की उसकी उदारता को देखते हुए पूरे कार्यालय में उसका नाम मर्दा पड़ गया था। रक्तदान के बदले वह किसी से ना तो कुछ लेता था और ना ही कोई अपेक्षा रखता था। उसके इसी निस्वार्थ स्वभाव के कारण ही मंजीत का नाम लोगों ने मर्दा अर्थात महान रक्तदाता रख दिया था, जो कि धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म में मर्दा हो गया था। सुरक्षा निरीक्षक चंद्रवंशी की बात सुनकर मर्दा बोल पड़ा, नहीं नहीं चंद्रवंशी साहब, नियम तो नियम है, सभी के लिए एक ही होना चाहिए। रक्तदान करना तो मेरा फर्ज है, इसकी आड़ में मैं अगर कार्यालय लेट पहुंचूं या अन्य लाभ उठाने लगूं तो वह फर्ज तो नहीं रह जाएगा ना। अरे वाह मर्दा जी, आपने तो सचमुच अपना नाम सार्थक कर दिया, कहते हुए सुरक्षा निरीक्षक चंद्रवंशी पूछ पड़े, तो आज लेट क्यों हो गए बता ही दीजिए। इस पर मर्दा ने कहा, चंद्रवंशी साहब, आज मैं रक्तदान करने नहीं गया था। दरअसल आज मेरी बिटिया सोनिया का रिक्शा वाला एक टाइम की छुट्टी पर था, अतः मैं सोनिया को छोड़ने स्कूल गया था। सदर के इलाके में सोनिया का स्कूल है, वहां की भीड़भाड़ मोटर गाड़ियों की रेलम पेल को तो आप जानते ही हैं। ऊपर से ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने वालों के कारण वहां रोड जाम हो गया था। बड़ी मुश्किल से निकलकर मैं ऑफिस आ पाया हूं। अच्छा अच्छा, कहते हुए कालीचरण ने मर्दा के सामने पंजीयन रजिस्टर रखते हुए हस्ताक्षर करने को कहा। रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के उपरांत मर्दा गंभीर मुद्रा लिए हुए बोल पड़ा, चंद्रवंशी साहब, अनेक लोग तो रोड को अपना घर ही समझ लेते हैं, गलत पार्किंग करते हैं और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए फर्राटे

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कथायन में कहानी मर्दा। कहानीकार हैं श्री विजय मिश्र।
1: मर्दा बार बार अपनी घड़ी को ताकता और दूने वेग से

से गाड़ियों को भगाते हैं, अपने साथ साथ अन्य वाहन चालकों राहगीरों की जिंदगी को भी ऐसे लोग खतरे में डाल देते हैं। क्या यह उचित है? इससे तो आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात तो तुम्हारी 100% सच है मंजीत भाई, पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सोच रखने वालों की संख्या भी तो बहुत कम है, कहते हुए चंद्रवंशी ने कहा, जाइए मंजीत भाई, और देर मत कीजिए। कार्यालय प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करके मर्दा प्रवेश पास लेकर अपने कार्यालय की ओर तेजी से बढ़ चला। ऑफिस पहुंचकर बिना वक्त गंवाए वह कार्यालयीन कार्य में तल्लीन हो गया और लंबित फाइलों का कार्य तेजी से निपटाने लगा। दरअसल आज वह नहीं चाहता था कि पूर्व के दिनों की भांति शाम 5 बजे के बाद भी कार्यालय में उसे बैठना पड़े। कार्यालयीन कार्यों के लिए अक्सर उसे देर तक रुकना पड़ता था। इससे उसे तो कोई शिकायत नहीं थी, पर जब वह घर पहुंचता था तो उसकी नन्ही बिटिया सोनिया शिकायत भरे लहजे में बोल पड़ती थी, पापा जी आप जल्दी क्यों नहीं आ जाते? सबके पापा तो रोज 5 बजे आकर अपने अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, होमवर्क करने में भी मदद करते हैं। आज भी मर्दा जब सोनिया को स्कूल छोड़ने गया था तो स्कूल गेट पर अलग होते हुए सोनिया बोली थी, पापा जी स्कूल से छुटकर रिक्शा वाले दादू के साथ मैं घर पहुंच जाऊंगी, आज शाम को मैं आपका इंतजार करूंगी, 5 बजे आप जरूर आ जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और हां आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। प्रत्युत्तर में वादा करते हुए मर्दा बोल आया था, बेटी आज शाम को ठीक 5 बजे मैं घर आ जाऊंगा, वादा रहा, और फिर तुम्हें मेला भी घुमाने ले चलूंगा। मर्दा ऑफिस के काम में व्यस्त था, तभी चपरासी बुधराम ने आकर कहा, मर्दा भैया आपको अग्रवाल साहब बुला रहे हैं। यह सुनकर मर्दा चौंक उठा, उसने घड़ी को देखा तो 5:10 बाकी थे। वह बड़े साहब के कक्ष की ओर जाते जाते सोचने लगा, साहब कोई ऐसा काम ना सौंप दें जिससे आज भी देर तक कार्यालय में रुकना पड़े। साहब के चेंबर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मर्दा ने कहा, मे आई कम इन सर? मर्दा की आवाज सुनकर अग्रवाल साहब ने स्वीकृति देते हुए कहा, मंजीत तुम्हें रक्तदान करने का एक मौका और मिलने वाला है, अस्पताल से डॉक्टर गौतम का फोन आया है, ये लो बात कर लो। अग्रवाल साहब से फोन लेकर मर्दा खुश हो उठा, उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए थे मानो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई हो। वह बोल पड़ा, हेलो मंजीत बोल रहा हूं सर, बताइए क्या काम है? उधर से डॉक्टर गौतम ने कहा, मंजीत जी तत्काल अस्पताल आ जाइए, एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें पेशेंट को भारी चोट लगी है, वह काफी सीरियस है, आपके ब्लड ग्रुप की ही उसे आवश्यकता है। जी आ रहा हूं सर, तुरंत आ रहा हूं, कहते हुए मर्दा फोन रखकर साहब से अनुमति लेकर साइकिल स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। अपनी साइकिल की डंडी पर लगी छोटी सीट को देखकर एकाएक मंजीत ठिठक गया। उसे अपनी बेटी सोनिया से किए हुए वादे की याद हो आई। उसे लगा आज भी वह समय पर घर नहीं पहुंच पाएगा, पर फिर उसे अपने कर्तव्य की निर्वहन की याद आई। वह स्वयं को संयमित करते हुए साइकिल निकालकर अस्पताल की ओर बढ़ चला। वह जानता था कि ऐसे पल कितने कीमती हुआ करते हैं,

0: अतः एक पल खोना भी उसे भारी पड़ रहा था। तेजी से साइकिल चलाते हुए जब वह मेन गेट से बाहर कुछ दूरी पर पहुंचा तो उसे भारी मोटर गाड़ियों सहित भीड़ दिखाई दी। पूछने पर पता चला किसी की बारात निकली हुई है। नाच गाना, गाजा बजा, फटाके फोड़ने के कारण रास्ता जाम है। शाम 5 बज जाने के कारण सभी कार्यालय छूट गए थे, इसलिए और अधिक संख्या में लोग जमा हो गए थे। आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया था। मर्दा भीड़ के बीच से जैसे तैसे जगह बनाते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अपने इस प्रयास के कारण उसे लोगों की डांट भी खानी पड़ रही थी। बरातियों से जिनका कोई संबंध नहीं था वे बेचारे मन मसोस कर शांत रुके हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी इस गलत पद्धति का विरोध कर सकें। ऐसे लोग अपनी अपनी परेशानियों की चर्चा करने में लीन थे। मर्दा यह सोचकर परेशान था कि यदि दुर्घटनाग्रस्त पेशेंट को वक्त पर रक्त नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। बुरी तरह से जाम में फंसा किंग कर्तव्य विमूढ़ मर्दा का ध्यान इसी बीच जाम में फंसी महिलाओं की ओर गया। उसने महसूस किया कि महिलाओं के चेहरे पर घर की चिंता स्पष्ट उभर आई थी। वह सोचने लगा इनमें से कितने लोगों के नन्हे बच्चे दूध के लिए, वृद्ध माता पिता दवाई के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यही सोचते सोचते उसे अपनी बिटिया सोनिया का भी ख्याल आया और फिर वह आगे पढ़ने के प्रयास में जुट गया। अंततः खिसकते खिसकते वह भीड़ से निकलने में कामयाब हो गया। लगभग आधे घंटे लेट हो जाने की पीड़ा लिए हुए मर्दा हॉस्पिटल में सीधे डॉक्टर गौतम के कक्ष में पहुंचा तो पता चला वे ऑपरेशन थिएटर में हैं। वह थिएटर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते जा रहा था। वह थिएटर के द्वार पर पहुंचा तो अंदर से डॉक्टर गौतम थके मांदे मायूस चेहरा लिए बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे की उदासी की झलक देखकर मर्दा अनहोनी की आशंका से सिहर उठा। वह घबराते हुए बोला, मैं आ गया हूं सर, ब्लड देने को तैयार हूं, चलिए। प्रत्युत्तर में डॉक्टर गौतम ने कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी मर्दा, अन्यथा तुम्हारा रक्त समय पर पाकर हम एक दुर्घटनाग्रस्त नन्ही बच्ची की प्राण रक्षा करने में सफल हो गए होते। नन्ही बच्ची सुनकर मर्दा चौंक पड़ा। वह पूछा, कौन नन्ही बच्ची? उसके गार्जियन साथ में नहीं है क्या? तब डॉक्टर गौतम ने कहा, किसी स्कूल की बच्ची है, उसके स्कूल बैग में रखे कॉपी किताब में सोनिया नाम अंकित है। सोनिया नाम सुनकर मर्दा कांप उठा था। वह कुछ कह पाता उसके पहले ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और स्ट्रेचर पर सफेद चादर में ढकी हुई डेड बॉडी लेकर वार्ड बॉय बाहर निकले। मर्दा से रहा नहीं गया। वह बदहवास स्ट्रेचर के पास पहुंचा और सफेद चादर को उठाया तो चीख पड़ा, सोनिया, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। वह सोनिया के सीने पर सर रखकर फफक फफक कर रो पड़ा। रोते हुए वह बुदबुदा रहा था, मुझे माफ करना मेरी बच्ची, 5 बजे आने का वादा मैं आज भी पूरा नहीं कर सका।
1: अभी आप सुन रहे थे कथायन में कहानी मर्दा। कहानीकार थे

विजय मिश्र। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ फिक्र, एहसास और हकीकत को भी पर्दे पर उतारा। ऐसे ही फिल्मकारों में निर्देशक चेतन आनंद का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 3 जनवरी 1921 को लाहौर में हुआ था। वे प्रसिद्ध आनंद परिवार के सबसे बड़े भाई थे। उनके छोटे भाई देवानंद और विजयानंद भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज नाम बने। चेतन आनंद ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत निर्देशक के रूप में की और उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने 1946 में पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई। उनकी फिल्मों में सामाजिक सरोकार, इंसानी जज्बात और देश प्रेम की गहरी झलक मिलती है। हकीकत, हीर रांझा, आखिरी खत जैसी फिल्में आज भी उनकी फनकारी की मिसाल मानी जाती है। भारतीय सिनेमा में उनका नाम हमेशा एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने कला को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और इंसानियत की भी आवाज़ बनाया। निर्देशक चेतन आनंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें आदरांजलि देते हैं उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के जरिए। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म हकीकत का गीत। गीतकार थे कैफ़िया आज़मी और संगीतकार थे मदन मोहन।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना फिल्म टैक्सी ड्राइवर का गीत, आवाज़ थी तलत महमूद की, गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम

0: कम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म हीर रांझा का नगमा, आवाज लता मंगेशकर की, गीत कैफी आजमी का, संगीत मदन मोहन का।

अभी आपने सुना फिल्म कुदरत का गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था राहुल देवबर्मन का। लीजिए अब सुनिए फिल्म आखिरी खत का नगमा, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत कैफ़ी आज़मी का, संगीत खयाम का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। कलाकार हैं उर्मिल वढ़ेरा। इनके स्वर में पहले सुनिए वीरेंद्र मिश्र की ये रचना।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थी उर्मिल वढ़ेरा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया।

0: और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा अन्य आवासीय परिसरों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नए छात्रावास और आवासीय परिसरों के निर्माण से विद्यार्थियों और चिकित्सकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कैंसर भवन के विस्तार से प्रदेश में कैंसर उपचार सेवाएं और मजबूत होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ. तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉ. तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉ. तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस बीच कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति भी मिली है। अब तक किसानों को 7,27,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है, जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुलेखा पेंडसे का गाया राग देश में ख्याल। आपके साथ संगतकार हैं तबले पर SS पांडा और हारमोनियम पर विजय कुमार कुर्मा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुलेखा पेंडसे का गाया राग देश में ख्याल। आपके साथ संगतकार थे तबले पर SS पांडा और हारमोनियम पर विजय कुमार कुर्म। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म हीरो का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए अब सुनिए फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का नगमा, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव परमन का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

किशोर कुमार की आवाज़ में। अभी आपने सुना फिल्म मेरे जीवन साथी का गीत, गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था राहुल देवबर्मन का। लीजिए अब सुनिए फिल्म नसीब का नगमा, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

चालबाज। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक

0: संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनव। फोन संवाद और प्रस्तुति है प्रवीणा त्रिपाठी की।

डोरिया भींज के छानी धर ले नागर धर तू तारी अरारार के तता अरारार के तता। संगी हो आषाढ़ आगे और हमर प्रदेश के जम्मू जिला में बरखा घलो आगे है, तो चलो नागर तुतारी ला धर के खेत खार को दे।

0: चले जाए। लेकिन ए समय मा बखत हे आप मन ले गोठ बात करेगी, काबर आज हवे बृहस्पतिवार और आज आप मन ले गोठियाना है फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम मा। त लेवो हमर राम राम और आप मन के स्वागत करत हन मैं प्रवीणा त्रिपाठी। आवाव लेवन पहली फोन कॉल। हेलो, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: जय जोहार दीदी।
0: जय जोहार, कौन बोलत हो?
1: मैं ज्योति रानी गुड़िया साहू बोला दीदी, दहियान बांधा बाजार से।
0: ज्योति रानी गुड़िया साहू, इतना सारा आप मन के नाम है?
1: नहीं मुन, निक नाम हरे हो मन, लेकिन ज्योति साहू शॉर्ट नाम है।
0: दहियान बांधा बाजार ले आप मन के हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी।
0: बताओ का काम बूता करते हो आप मन?
1: अभी तो बस हमारे ना कॉलेज की पढ़ाई चलत रही, रिजल्ट नहीं आए दीदी, तभी घर में हावर।
0: अच्छा, तो कौन क्लास की पढ़ाई चलत रही से आप मन के?
1: बीए फाइनल ईयर में रही हूँ।
0: हाँ,
1: अभी रिजल्ट नहीं आए, अब रिजल्ट चल देखा था नौकर बात कुछ आगे करेगा कोशिश में हन।
0: अच्छा अच्छा, तो का करें के मन है आप मन के?
1: मोर ना डिफेंस लाइन में जाए के मन है, तो ओकरे तैयारी करूँ कहा दीदी।
0: अरे वाह, का बात है भाई, तो का कैसे तैयारी करूँ?
1: मैं ना वो घर से भी प्रयास करूँ कहा था, कोचिंग करूँ कहा था दीदी।
0: हाँ बने हैं एकदम बढ़िया, कोचिंग करूँ और एकदम मेहनत करूँ, और डिफेंस में जाना है तो थोड़ा शारीरिक श्रम घलो करे बर पड़ी आप मनला।
1: हाँ दीदी।
0: तब बताओ ज्योति रानी जी, आज के एक कार्यक्रम में आप मनला कौन गीत सुनना है?
1: अभी सावन के मौसम आने वाला है दीदी, द मोर खेती खारे रूम झुम मन भरा नाचे छुम छुम वाले ना प्रकाश देवांगन के गीत सुना दे।
0: आप मल्ला हम सुनवाथन प्रकाश देवांगन के गाए ए गीत। फोन करे बर ज्योति जी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ जयराम मैडम,
0: जयराम कौन बोलत हो?
1: मैं टेसुराम साहू, ग्राम फागुन दास, जिला बालोद से कहा था।
0: तो का काम बुता करतो?
1: ए रोपा पानी चला थे, कैसे किसानी करता है ना, रोपा तैयारी चला थे।
0: तो बारिश हुई से आपन के यहाँ?
1: हाँ, बोरिंग वाला भी है, तो बोरिंग से मतलब चला थे, और बदले सा या रात गिरी से काली रात के, और बीच बाद में अभी गिरते थे बूंदा बांधी, बीच बाद में से अभी नमी है भी, और कभी गिरा थे गिरते आते, अभी नमी है, और बोरिंग वाला है ना हमारे क्षेत्र है, तो पानी कोई दिक्कत ही नहीं है, पेड़ पौधा गलो है, पेड़ पौधा गलो लगा था ना मन है।
0: बढ़िया बने हैं, बने तो आप मन के खुशी ला हम दुगना करत हैं। बताओ कि कौन कलाकार के गाना आप मन ला सुनना है आज?
1: और जब गिरते आते बादर वाला सुनू कहा रहे हैं
2: जब।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: कला कुटा जुगनीपाली छत्तीसगढ़ से शिवचरण वर्मा बोल रहा हूँ।
1: शिवचरण वर्मा जी के हम एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन।
2: धन्यवाद मैडम।
1: तब बताओ शिवचरण जी, का काम बूता करतो?
2: मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, अभी खेती किसानी करता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो खेती किसानी में का तैयारी करे हो आपन? हाँ,
2: अभी धान जगह तैयारी करत है।
1: बारिश हुई से आपमन के? हाँ
2: हाँ, बारिश धानी हुई थी सरलग।
1: अच्छा अच्छा,
2: बनी बारिश हुई।
1: अच्छा चलो बढ़िया है। तो बताओ आज के कार्यक्रम में कौन गीत सुनना है?
2: मैंने ममता चंद्राकर के स्वर में है, करूंगा लो कौन मन भेटो।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ, जय राम बहन जी।
0: जय राम भैया जी, कौन बोलत हो?
1: पवन कुमार सेन बोला तो गंडी पंडरिया ले।
0: पवन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के।
1: अब आप मन बहुत बहुत धन्यवाद देवत हमें।
0: का काम बुता करत हो?
1: मैं तो मिस्त्री लाइन में मकान मिस्त्री ठेकेदारी काम करत हो।
0: तो बारिश हुई से आप मन के होती?
1: हाँ, शुरुआत हो गए और नांगर वक्खर तक चालू हो गए, ट्रैक्टर वैक्टर।
0: अच्छा, तो खेत खार मन के काम शुरू हो गए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम झमाझम चालू हो गए। आए 3-4 दिन ले बने पानी तक को गिरी से।
0: अरे बाबा, का बात है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बताओ आज के कार्यक्रम में कौन गीत सुनना है?
1: कुलेश्वर ताम्रका के गाना है। गीत में खास रूप से फरमाइश मोर संगवारी पन्नालाल सेन के हवे
0: जी।
1: मोर छत्तीसगढ़ ला कहते भैया धान के कटोरा कुलेश्वर ताम्रकार संगवारी मन के गीत ला सुनवा दूं।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: राम राम दीदी,
0: राम राम, कौन बोला थो?
1: मैं चेतन साहू बोला था दीदी, रोहा से पलारी ले।
0: चेतन साहू जी के हमें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन भैया।
1: धन्यवाद दीदी।
0: का काम बूता कर थो?
1: मैं दीदी से गांव में छोटे मोटे घर कुरिया बनाते ने काम करे बस जात हूँ।
0: तो काम कोनो छोटा थोड़ी होवत है भैया।
1: हाँ मतलब मतलब ये दीदी की छोटे छोटे घर
0: तो छोट कन काम हो चाहे बड़े कन काम, काम होते नहीं भैया
1: जी? बिल्कुल
0: है
1: दीदी।
0: नहीं तो बताओ हाँ। चेतन साहू भैया कि आज के कार्यक्रम में कौन गीत आप मतलब सुनवा दन?
1: कलाकार के नाम तो याद नहीं आते दीदी अभी मुझे।
0: तो चेतन साहू भैया ये बताओ कि पानी बरसे है आप मन की होती?
1: हाँ दीदी, पानी बढ़िया गिरे है, धान पान का लोग आगे थोक थोक बचे है, लास्ट आती होती आगे हमारे हाथ।
0: अरे बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो पानी बने गिर गई इस मतलब?
1: हाँ बढ़िया गिरे दीदी, पानी है, प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के दिक्कत भी मत हो, पानी को मस्त पानी कांजी गिरत रहा है।
0: हाँ, सही बात है। तो आप मन पेड़ पौधा रुख रही मन लगा थो का?
1: वैसे तो दीदी अब हम लगात नहीं होते ज्यादा, कुछ कुछ तो घर में लगाए हैं जरूर। लेकिन हमारे साइड दीदी जंगली क्षेत्र पड़ते है थोड़ा दूर में, बहुत पेड़ पौधा है हमारे साइड।
0: अरे वाह क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के वन संपदा एकदम भरपूर हवे आपके ओती गांव में?
1: भरपूर है दीदी, हमारे साइड ओते दिक्कत नहीं है, पेड़ पौधा के मस्त है।
0: तो चेतन भैया आप मन ला सुनवा था ना आपके पसंद के गीत, फोन करे बार बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: जय जोहार दीदी।
0: जय जोहार, कौन बोला थो?
1: राम सिंगा से लवकुश सेन बोला था दीदी।
0: लवकुश सेन जी के एक कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत हन।
1: हाँ धन्यवाद दीदी।
0: का काम बुता करथो भैया?
1: मैं तो काम बुता डाकघर में काम करता हूँ, चिट्ठी पत्र छपाई के काम करता हूँ।
0: अरे वाह, का बात है भाई, आप मन तो सबसे जोरदार काम करत हो। हाँ
1: रेडियो कार्यक्रम भी सुनता दीदी। मोर तो रेडियो न 5:30 बजे से वंदे मातरम से शुरू हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: और 11:10 जय हिंद से समाप्त हो जाते हैं।
0: अरे वाह, का कहना भाई। और आप मन चिट्ठी पत्री छांटे के काम करते तो वहाँ ऑफिस में सुनत रही थो का रेडियो?
1: हाँ धीमी आवाज से सुनत रही था, कोनो पता नहीं चले।
0: अच्छा हाँ हाँ कोनो लो पता नहीं चले।
1: हाँ पता नहीं चला, ड्राग में रख देता हूँ रेडियो ला।
0: हाँ हाँ
1: सुनात रही था दीदी, बढ़िया मस्त छत्तीसगढ़ी को आप मन के मधुर बाड़ी में मस्त गोट बात सुनता।
0: बहुत बढ़िया
1: दीदी।
0: हाँ।
1: आप मन के टिया भुया बैठ के ना हम गीत ला सुनता नहीं, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति लोग परंपरा लोक जीवन की गीत ला सुनता।
0: हाँ।
1: मन गदगद हो जाते, आज के आवाज के तो मन बहुत एकदम में हो जाते, दीवाना हो जाते। आवाज में का जादू, का मोहनी
0: अरे अरे अरे भैया, बहुत ज्यादा तारीफ हो गए भैया। ये तो हमार सबो संगवारी मन ला कोशिश कर रहे थे कि हमार जो श्रोता मन है ते कार्यक्रम सुने में उमन ला कोनो मतलब दिक्कत नहीं आए, उमन ला बने लगे और रुचि के उनके कार्यक्रम हमन बनावे के कोशिश करत हन। यह कारण हो ही कि आप मन ला बने लगते और ये हमार बहुत बड़ा हमार प्रयास जौन सार्थक होते तेला हमू मन ला सुन के बने लगते, खुशी होवा थे कि आप मन ला हमार कार्यक्रम अच्छे लगते। तो बताओ कि आज के कार्यक्रम में कौन गीत आप मन ला सुनना है?
1: छत्तीसगढ़ से बढ़िया मस्त कलाकार है दीदी, कविता हिरकन अनुराग ठाकुर के गीत है।
0: हम्म,
1: कमजोरी निर्मल छुया गली गली बगराए हो पुन्नी के चंदा मुर्गा में।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: जयराम दीदी।
0: जयराम भैया।
1: हाँ, मैं रामचंद्र देवांगन बोला था।
0: तो रामचंद्र देवांगन जी के हमें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन।
1: धन्यवाद।
0: बताओ कि का काम बूता करतो भैया?
1: खेती किसानी करत हन दीदी।
0: तो अभी का काम चलते खेती किसानी के, और बारिश हो गए कि नहीं हो गए आप मन के यहाँ?
1: आप तो सुबह को पानी धरे है। थरहा डरे हैं अभी।
0: अच्छा, पानी बरसते?
1: हाँ, चालू है।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो अभी का तैयारी चलत है आप मन के खेती खार के?
1: थरहा
0: चलत है। अच्छा, तो थरहा हो गया कि थरहा बनाना है अभी?
1: नहीं, अभी बनावा था।
0: अच्छा अच्छा,
1: यह लगा के नहीं हुआ है अभी।
0: हाँ। तो बताओ कि आज के कार्यक्रम में कौन गीत ला सुनना है?
1: रज रजा के गिर जा पानी, वीरेंद्र सिंह चौहान, जय लक्ष्मी शर्मा के।
0: रामचंद्र देवांगन जी, आप मल्ला सुनवाथन आपकी पसंद के गीत। फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हॅलो, फोन करो छत्तीसगढी गीत सुनो।
1: हाँ नमस्कार दीदी, मैं दानी राम निषाद बोलत हूँ, ग्राम बाना थाना खरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ले।
0: ता आप मन के दानी राम जी, हम एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन।
1: धन्यवाद दीदी।
0: का काम बूता करते हो?
1: खेती किसानी काम करते हैं दीदी।
0: तो का तैयारी हो गई खेती खार के?
1: धान बोई के।

0: हॅलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: हाँ नमस्कार दीदी, मैं दानी राम निषाद बोलता हूँ, ग्राम बाना थाना खरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ले।
0: ता आप मन के दानी राम जी, हमें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन।
1: धन्यवाद दीदी।
0: का काम बूता करते हो?
1: खेती किसानी काम करते हैं दीदी।
0: तो का तैयारी हो गई खेती खार के?
1: धान बोई के लग दीदी, अभी आषाढ़ के महीना था।
0: तो बारिश हुई से?
1: हाँ बारिश हुई दीदी। हाँ ऐसी बारिश वाला दो दिन में बारिश से हल्का फुल्का मस्त होते हैं। हाँ
0: तो बने हैं बढ़िया। तो रुख राई घलो लगा हु?
1: हाँ लगान दीदी, रुख राई तको मस्त लगान, खेत खाद में लगे मस्त।
0: तो बताओ कि आज के कार्यक्रम में कौन गीत ला सुनना है?
1: ये आषाढ़ के महीना चला दीदी, तो उसमें था गाना है, चल गया किसान बोयल कली धान, आषाढ़ आ गए ना, वही गाना सुनना दीदी।

0: तसंगी हो ए रहिस आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में गीतला जोड़े रहिन वीर भान साहू मन हा। ता अब देव विदा अपन संगवारी प्रवीणा त्रिपाठी ला राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनव। फोन संवाद और प्रस्तुति थी प्रवीणा त्रिपाठी की। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। और मौसम विभाग ने आज रायपुर दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहलें सफलतापूर्वक

0: लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकासपरक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति भी मिली है। अब तक किसानों को 7,27,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है, जबकि 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में व्यापक वर्षा हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए और खेतों में पानी भरने लगा। रायपुर और बिलासपुर में कई स्थानों में जल जमाव की खबर है। इस बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 154 मिलीमीटर, दुर्ग में 181 मिलीमीटर और भिलाई में 115.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के युवाओं के लिए कल 7 जुलाई को जगदलपुर के शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। और मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश

0: से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं।

0: सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम डेढ़ घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस डेढ़ घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुन करके, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर।

0: अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी
1: है। कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से।
0: जी,
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
0: जी।
1: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: जी।
1: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
0: जी।
1: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
0: तो आराम कर लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
0: जी हाँ जी।
1: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
0: जी, जी।
1: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा

0: देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना

0: या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
0: जी।
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
0: जी।
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करने और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
0: हाँ, होती है।
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
0: प्रयास
1: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
0: जी।
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
0: हाँ, होता है।
1: तो इसका मतलब क्या हुआ
0: जी?
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
0: जी।
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
0: थोप
1: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
0: प्रोत्साहित करें।
1: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
0: जी,
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
0: जी,
1: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं
0: जी,
1: 8448440632 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर

0: सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी। आज कलाकार हैं भगत साहू और साथी। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए भगत साहू और संतोषी साहू की आवाजों में ये पारंपरिक गीत।

कार्यक्रम लोक रंजिनी अभी आप सुन रहे हैं। भगत साहू और दुर्योधन साहू की आवाजों में प्रस्तुत है ये नाचा गीत।

भगत साहू, संतोषी साहू, दुर्योधन साहू और साथी की आवाज़ों में प्रस्तुत है पीसी लाल यादव की ये छत्तीसगढ़ी रचना।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंजनी। आज कलाकार हैं भगत साहू और साथी। कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है पीसी लाल यादव की लिखी रचना, आवाज़ भगत साहू की है।

0: राम जग सिंघार कटल के हाथे जी,
1: राम जग सिंघार कटल के हाथे जी,
0: राम जग सिंघार।

कार्यक्रम लोक रंजनी अभी आप सुन रहे थे। आज कलाकार थे भगत साहू और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को हैं। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक

0: स्वास्थ्य कार्ड 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

संतोष आनंद की लिखी रचना को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की हैं। फिल्म का नाम है प्यासा सावन। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म गुरु का गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

चित्रपट संगीत इस कार्यक्रम में आखिर में सुनिए दिल तो पागल है का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत उत्तम सिंह का है, आवाजें उदित नारायण और लता मंगेशकर की हैं।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 8:30 पर प्रसारित होगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात का विषय होगा खुद को हमेशा अपडेट रखें, क्रम आपकी चिट्ठी एक ही फिल्म से, और दीदी की सलाह का विषय होगा प्रेशर कुकर की देखभाल। चित्रपट संगीत का आप आनंद

शब्द ले सकेंगे दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, रात 8 बजे और 9:15 पर। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आजकल का विषय होगा बोलना भी जरूरी है। क्रम सर्जना में सुनिएगा अक्षय शर्मा का कविता पाठ और इंद्रधनुष। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी स्वाति देशपांडे। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी उर्मिला वढेरा। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। आज की बात का विषय होगा खेती में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव और ओखर निदान। आज की सलाह का विषय होगा अश्वगंधा और एलोवेरा की खेती। इस विषय पर डॉक्टर सत्यप्रकाश विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पहंदा दुर्ग द्वारा ली गई जानकारी। साथ ही आज का प्रश्न, गीत संगीत, बाजार भाव, मौसम और कल के कार्यक्रम। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर आप सुन सकेंगे रात 10 बजे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा उस्ताद आमिर खां का राग दरबारी में गायन। और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रसारित होगा शाम 5:05 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

मौसम ने ली है करवट, मानसून ने दी है दस्तक, ऐसे ही बदलता है समय भी। और बहनों, अभी समय है आपसे मुलाकात का। बिंदिया सुन रही मेरी सभी सखियों को गीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, समय के साथ हर चीज बदलती है, हमारे काम करने के तौर तरीके, परिवेश, कुछ नवीनतम विचार भी, जो हमारे जीवन को, समाज को नया रास्ता दिखाते हैं। बहनों, जैसे हम बदलते मौसम के अनुरूप घर को, अपने खान पान को व्यवस्थित करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें खुद को भी बदलते समय के साथ बदलना पड़ेगा। यानी ये जाने कि आजकल किन तौर तरीकों से काम किया जा रहा है, आज की नित नई टेक्नोलॉजी हमारे कार्यों को कैसे सुगम बना रही है, इसे जाने सीखें। साथ ही कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इन्हें हम समझें, उनके बीच रहकर हर तरह की जानकारियों को साझा करें। बहनों, वर्तमान में हर काम ऑनलाइन होता है और ये बड़ी अच्छी सुविधा भी है, तो हमें इसे भी सीखना है, लेकिन बहुत ही सतर्कता और सजगता के साथ। यानी हर तरीके से खुद को अपडेट रखें, साथ ही समसामयिक खबरों से भी जुड़ें। अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़ चैनल से जुड़कर देश विदेश की हर हलचल की जानकारी भी रखें। कई बार हमें बढ़ते बच्चों से ये शिकायत रहती है बहनों कि वो हमें अपने साथ ज़्यादा शामिल नहीं करते, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि जब हम उनके साथ नए तौर तरीकों को जानेंगे, अपडेट रहेंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। खुद को अपडेट रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप स्वास्थ्य से संबंधित बातों की जानकारी ले लेते हैं, मोबाइल और ऑनलाइन बातों से संबंधित जानकारियों को जानते हैं, और इस तरह हम जागरूक हो जाते हैं। और जागरूकता हमें किसी भी

परेशानी में नहीं फंसने देती। बहनों, बातचीत तो बहुत हो गई, आगे भी चलती रहेगी। अब आपके पसंदीदा क्रम की ओर चलते हैं, एक फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग के गीत। 30 जुलाई साल 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग एक ऐसी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन किया था राज कपूर ने। फिल्म की पटकथा जैनेन्द्र जैन और कामना चंद्र ने लिखी थी। फिल्म कई सामाजिक मुद्दों को उठाती है, समाज में फैली कुप्रथा और कई ज्वलंत समस्याओं को उजागर करती है। राज कपूर ने सामाजिक विषयों पर वापसी करते हुए स्त्री के जीवन से जुड़ी उन सारी समस्याओं को इस फिल्म में सामने रखा था जो समाज की खोखली परंपराओं के कारण पैदा होती हैं। फिर भी ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर हमें अच्छी राह पर चलना है, और ये संदेश देता है फिल्म का ये गीत, जो कहता है कि ढाई अक्षर प्रेम का वो शब्द है जिससे सारा संसार बंधा है।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वरों में गीत था संतोष आनंद का और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहनों, अभी हम बात कर रहे थे ना खुद को अपडेट रखने की। हमें आपके साथ कौन अपडेट रखता है? वो रखते हैं आपके पत्र, आपके ईमेल, जिससे हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो आप क्रम समझ गए होंगे। अब हम चालू कर रहे हैं आपकी चिट्ठी। सबसे पहले ये मेल हम दे रहे हैं सिलोचनी मसिया, तुषारिणी, शीला, पायल, गरिमा, दीपिका, रोहिणी, काजल, मेघा और वर्षा का। 11 जून की बिंदिया के लिए इन्होंने मेल किया है, जिसे लेकर आई थी हमारी सखी जुनेदा खान। इस दिन की हेलो बिंदिया को इन्होंने बहुत पसंद किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर दी गई जानकारी भी इन्हें बहुत पसंद आई। हम अपनी सखी जुनेदा खान तक आपकी ये बधाई प्रेषित करते हैं बहनों। और हमारी यही बहनें हैं जिन्होंने 14 जून को प्रसारित बिंदिया, जिसमें रक्तदान दिवस पर विस्तार से जानकारी दी गई थी, इसे भी पसंद किया है। और साथ ही इसी दिन एक वार्ता का प्रसारण हुआ था, नई दिशा नारी शक्ति, और इसकी वार्ताकार थी रश्मि दुबे, इसे भी बहनों ने बहुत पसंद किया है। तो आकांक्षा दुबे जी तक भी आपका ये संदेश हम पहुंचा रहे हैं। ये अगला पत्र है शारदा वर्मा, सीमा, दामिनी वर्मा का, नवागढ़ कटई से, जो 18 जून की बिंदिया के लिए आया है। आज का कार्यक्रम मंजुला जैन लेकर आई थी। इस दिन प्रसारित वार्ता स्वरोजगार से सशक्तिकरण तक, ये जिसकी वार्ताकार थी अंजलि औदिया, इसे सखियों ने बहुत पसंद किया है। साथ ही मंजुला जी की प्रस्तुति के लिए इन्होंने बधाई प्रेषित की है। तो मंजुला जैन तक हम आपकी ये बधाई प्रेषित कर रहे हैं। बहनों, हमारी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि आप हमें पत्र ज़रूर लिखें, पत्र लिखें, ईमेल करें और हमें अपनी सारी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। आपको यदि कार्यक्रम में कोई फेरबदल चाहिए तो भी बताएं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, बुरा लग रहा है तो भी बताएं, और क्या बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों अच्छा लगा है, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग लिखें। हमें आपके पत्रों का बहुत बहुत इंतज़ार रहता है बहनों, और पत्रों में कमी मत करिए। इसके लिए पता बता देते हैं, कार्यक्रम बिंदिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर 492

001 ईमेल आईडी है raiapkichitthi11@gmail.com। तो बहनों, आप पत्र लिखेंगी ऐसी हमें उम्मीद है। और आइए अब लौटते हैं अपने क्रम एक फिल्म से की ओर और थोड़ी सी नज़र डालते हैं फिल्म की कहानी पर। मनोरमा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी और देवधर यानी ऋषि कपूर, इनके द्वारा अभिनीत प्रेम कहानी जो बेहद सच्ची है, पवित्र है, लेकिन रूढ़िवादी समाज के नियमों के कारण इन्हें कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ता है। मनोरमा ओस की बूंद की तरह नाजुक, भोली और मासूम है। वो बड़े ऐशो आराम में पली बढ़ी और किसी भी बुराई या किसी भी तकलीफ से अनजान है। देवधर उसका बचपन का साथी है। अपने मन की हर बात वो देवधर से साझा करती है। उधर देवधर उसे मन ही मन प्रेम भी करता है, पर कभी कहता नहीं। मनोरमा सुख दुख की बातें, खुशी की वजहें पूछती है और इन सारे मासूम सवालों में उसके मित्र देवधर का साथ पाकर खुश होती है।

समय बीतता जाता है। मनोरमा का ब्याह उसके ही समकक्ष एक बड़े घराने में तय होता है। अल्हड़ मनोरमा बहुत खुश होती है। उसके लिए विवाह के मायने सिर्फ सजना संवरना और सुखमय जीवन बिताना होता है। समाज में फैली कुरीतियों से अनजान रमा छोटी उम्र में ही ब्याह दी जाती है। शादी की तैयारियां जोर शोर से चलती हैं, वह झूम कर नाच उठती है और देवधर उसे देखता रहता है। सामान्य परिवार का लड़का देवधर कुछ नहीं कहता, केवल रमा की खुशी में शामिल हो जाता है।

फिल्म का दूसरा हिस्सा लंबे समय के अंतराल को दिखाता है। रमा विवाह के तीसरे दिन ही विधवा हो चुकी होती है। देवधर जो शहर चला गया था, जब वो लौटकर आता है और रमा को इस रूप में देखता है तो स्तब्ध रह जाता है। और यहीं से कहानी बहुत बड़ा मोड़ लेती है। पारिवारिक रीत रिवाज, सामाजिक नियम, ऐसे में अंत को बहुत ही अलग तरीके से फिल्म में प्रस्तुत किया गया है और संदेश भी दिया गया है। समाज के आक्रोश और विरोध के बावजूद विधवा रमा और देवधर के विवाह पर फिल्म का सुखांत होता है। बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता अर्जित करने वाली ये फिल्म दिग्गज कलाकारों के साथ थी। शमी कपूर, सुषमा श्रेष्ठ, नंदा, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद, तनुजा, बिंदु, ओम प्रकाश, सभी ने अपनी भूमिका इस फिल्म में बखूबी निभाई। फिल्म का संगीत पक्ष भी बेहद सुरीला था। अपने जमाने की नामचीन अभिनेत्री नंदा ने इस फिल्म में बड़ा अच्छा अभिनय किया। उन्हें भले ही कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अपनी खामोशी के साथ आंखों से ही नंदा ने अभिनय का आसमान छू लिया। फिल्म प्रेमरोग को 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर और एडिटिंग के लिए राज कपूर को और सर्वश्रेष्ठ गीत की रचना के लिए संतोष आनंद को फिल्मफेयर अवार्ड मिला।

बहनों, कार्यक्रम का समय पूरा होने जा रहा है, तो जाते जाते छोटी सी एक काम की बात जो आपकी रसोई से संबंधित है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को लंबी उम्र देने और सुरक्षा के लिए उसके इस्तेमाल पर ध्यान दें। हल्के डिशवाशर साबुन या सॉफ्ट स्पंज से इसे साफ करें। साफ करते वक्त इसका गास्केट अलग करके हल्के साबुन पानी से धोएं, और अगर रबर ढीली लग रही है या सख्त हो गई है तो उसे तुरंत बदल दें। ये आपको दुर्घटना से भी बचाता है। और खासकर इस बात का ध्यान रखें कि कुकर को ज़्यादा देर तक गंदा न छोड़ें। जैसे ही आपका काम खत्म होता है आप तुरंत उसे अपने हाथों से साफ करें। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, आप सभी को गीता शर्मा का नमस्कार।

0: महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत में सबसे पहले सुनिए फिल्म जोशीला का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है RD बर्मन ने और आवाज है किशोर कुमार की।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म साथी का गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है नौशाद ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लव इन टोक्यो का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति

0: महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ तकानेन।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
3: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की

0: राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादें।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है।
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए

फिल्म जीना तेरी गली में। इस फिल्म के लिए गीत गाया है अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने, गीतकार हैं रविंदर रावल और संगीत तैयार किया है बाबुल बोस ने। लीजिए सुनिए फिल्म जीना तेरी गली में का ये गीत।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तैं सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत, जिसे गाया है कुमार शानू ने। संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

लीजिए आप सुनिए अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में फिल्म सनम का गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत तैयार किया है आनंद मिलिंद ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म सातवां आसमान का ये गीत, जिसे गाया है प्रीति उत्तम और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और संगीत तैयार किया है राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म मोहरा का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत विजू शाह का।

इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, ये सभा अब समाप्त तो होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे इसी बैंड और फ्रिक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी के आसपास पशु पक्षी होते हैं जिनमें कुछ पेट्स यानी पालतू जानवर हैं तो कुछ हमारे घरों के आसपास हमें दिखाई देते हैं जिनके संपर्क में हम जाने अनजाने आते ही रहते हैं। बेशक जानवरों से प्रेम करना ज़रूरी है, साथ साथ ज़रूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना भी। इसी बात के मद्देनज़र हम जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे वो है जूनोसिस। क्या है जूनोसिस और कैसे रहे इससे सुरक्षित, इस विषय में जानेंगे विस्तार से क्योंकि आज है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आज के विषय से जुड़ी आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि इस समय हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। तो आप दो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हम इधर स्वागत करते हैं अपने दोनों विशेषज्ञों का। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के रसानिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि विश्व जूनोसिस दिवस क्या है और इसे 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आज विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास ये है कि लुई पाश्चर, जिन्होंने 1885 में रेबीज वैक्सीन की सफलता की याद में यह दिवस शुरू किया गया था जी। उन्होंने पहली बार रेबीज वैक्सीन एक बच्चे को लगाई थी जिसको रेबिट डॉग ने काटा था और उसका सफल परीक्षण किया था। इसका उद्देश्य हर साल मनाने का यह है कि लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करना, इसका उद्देश्य है
1: जी। बहुत ज़्यादा विस्तार से आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हम श्रोताओं से लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसको गौर से सुने। आपका भी कोई सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि जूनोटिक रोग क्या होते हैं और इनका मनुष्यों और जानवरों से क्या संबंध है?
2: देखिए, जूनोटिक रोग वे

0: संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। देखा जाए तो लगभग 60% रोग जो हैं मनुष्यों में जो आज की डेट में हो रहे हैं वो जानवरों से होते हैं, और जो नई नई बीमारियां जो पैदा हो रही हैं 75% बीमारियां जो हैं ये कहीं ना कहीं जानवरों द्वारा फैलाई जा रही हैं, और इसका कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, परजीवी हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60% संक्रामक रोग जेनेटिक रोग होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: शुद्ध संगीत से प्रेम हो, पशु पक्षियों से प्रेम हो, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने बहुत ही प्यारा सा अभी गीत सुना, लेकिन जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है कि हमें सुरक्षित रहना भी है, हमें जानवरों की सुरक्षा भी करनी है, पशु पक्षियों की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है कि पालतू पशुओं से भारत में सबसे आम जूनोटिक रोग कौन कौन से हैं जिनसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं?
1: देखिए, हम लोग पेट के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं, बिकॉज इसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इवन कैटल्स हैं, डेयरी फार्म है, पिगरी हैं, तो ये जो कि इन कांटेक्ट रहते हैं ह्यूमन के साथ, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मेरे मन में, जो सबके लोगों के, इवन ए लेमैन के मन में सबसे पहले ध्यान यही आता है कि रेबीज डिजीज़ ऐसी है जो डॉग से या एनिमल से ह्यूमन को होती है, तो उसकी प्रिवेंशन भी होती है, लेकिन अगर वो उसके सिम्टम्स आ जाएं तो वो 100% फेटल डिजीज़ होती है। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं, ना कि डराते हैं कि आप डॉग से दूर रहें, बट अवेयर रहेंगे तो आप रेगुलर वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसको अपने डॉक्टर के साथ बात करेंगे, उसके कोई ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसलिए रेबीज, मीन डॉग से आप ऐसे डरे नहीं कि हर डॉग इज़ नॉट ए रेबीज डॉग, दे आर नॉट बॉर्न विद दिस डिजीज़, लेकिन अगर वो उसको एनवायरमेंट से या किसी और वाइल्ड एनिमल से रेबीज डॉग ने रेबीज एनिमल ने उसको काटा है, तो उसको रेबीज अगर हो गई है तो वो रेबीज, अगर वो रेबिट डॉग अगर आपको काटेगा तभी रेबीज होती है। ऐसे हर डॉग बाइट एक रेबिट बाइट नहीं होती। और एक बड़ी मिथ है कि अगर जैसे विलेज में या ऐसे रिमोट एरियाज में जहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, अगर डॉग ने काटा है तो लोग वहां मिर्च लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर ओपन वुंड को आपने मिर्च या हल्दी से बंद कर दिया तो वो वायरस अगर है तो वो मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और इन्वेड कर सकता है इन द बॉडी। वो डेंजरस है, वो नहीं करें। सबसे पहले अगर किसी भी एनिमल ने आपको बाइट किया, उस एरिया को आप 15 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में सोप के साथ क्लीन करते रहें और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल गिव द एंटी रेबीज बूस्टर्स और इम्यूनोग्लोबुलिन जो डॉक्टर उस टाइम पे उचित समझेगा।
0: जी, ये सिर्फ डॉग्स के मामले में है या जैसे बंदर काट लेता है, बिल्ली भी काट लेती है, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है?
1: लाइक अगर वो रेबिड है तो ही, अदरवाइज ऐसे सिंपल बाइट तो वी ट्रीटेड एज ए ओपन वुंड ओनली, बट प्रिकॉशनरी अगर हिस्ट्री नहीं है, एनिमल इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी इवन मेडिकल डॉक्टर्स दे एडवाइज टू टेक प्रोफाइलेक्टिक डोजेस लाइक 0 डे, 3rd डे, 7th डे, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द वुंड। तो इसलिए कोई भी बाइट को आप सीरियसली नहीं ले, हमें सीरियसली लें और उसको अच्छी तरह वॉश करें और अपने डॉक्टर से बात करें।
0: मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं बाइट हो गई है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अरे थोड़ा सा है, खरोच लगा है या कुछ है, बहुत अवेयर रहना।
1: एनिमल से बहुत डिजीजेस कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 70% डिजीजेज ऐसी हैं जो एनिमल से ह्यूमन को होती हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रेबीज है, लेकिन अगर उसका आपने क्लीनिंग अच्छी नहीं, हाइजीन नहीं किया, जहां आपके पेट्स हैं यूरिन है, अगर वो इन्फेक्टेड है लेप्टोस्पायरा से, तो इवन ह्यूमन कैन गेट लेप्टोस्पायरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि फेटल हो सकती है लेटर ऑन। ऐसे ही एक स्केबीज इन्फेक्शन है जो स्किन डिजीजेज होती हैं, अगर आपके पेट को है तो आपको भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है आपके पेट में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है तो इमीडिएटली आपने वेटनेरियन से बात करें, तो उसको सेफ रखें और आप, मुझे लगता है आप भी उससे सेफ रहेंगे।
0: जी, डॉक्टर एस के रसानिया जी, आपके पास आना चाहूँगी। जूनोटिक बीमारियाँ कैसे फैलती हैं और इनके प्रमुख संक्रमण के रास्ते कौन कौन से माने जाते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बीमारियां फैलने के बहुत तरीके हैं जो बीमारी पेट्स ये जानवरों से फैल सकती है। एक तो यदि कोई व्यक्ति सीधे संपर्क में आए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो संक्रमित जानवर को छूने से, उसको पालने से, उसको काटने या खरोंचने से, या उस जानवर के सलाइवा, खून या पेशाब या बलगम के संपर्क में आने से हो सकती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है जैसे उन जगहों पर जहाँ आप जानवर रहते हैं, जैसे कि दूषित मिट्टी, एक्वेरियम का पानी, पालतू जानवरों के बर्तन, मुर्गियों के दड़बे, उनमें जाने से हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि जो इंसेक्ट बाइट, कीटों के काटने से, जैसे कि कोई टिक्स या फ्ली हुए या

0: क्यों हुई, उसे काटने से भी क्या हुआ, संक्रमित जानवर को काटे और वो यदि मनुष्य को काट लेगा तो उसमें भी रोग हो सकता है, या दूषित भोजन के द्वारा जैसे कच्चा या अधपका मांस खाया, बिना उबला मांस खाया, या इन्फेक्टेड दूध पिया उस जानवर का, या ऐसा भोजन खाने से जो कि जानवर के मल से दूषित है, उससे भी ये बीमारियाँ फैल सकती हैं। तीसरा एक और मुख्य कारण है दूषित पानी द्वारा, जैसे ऐसे पानी को पीने से उसके संपर्क में आने से जिसमें संक्रमित जानवर का यूरिन या उसका मल यदि मिला हुआ है तो वो यदि ले लेगा तो उसमें हो जाएगा। तो कई प्रकार के जूनेटिक बीमारी हैं, उसको कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कुछ वायरल बीमारियां हैं, कुछ बैक्टीरियल बीमारी हैं, कुछ पैरासिटिक या परजीवी बीमारियां हैं, कुछ फंगल बीमारियां हैं, तो अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मगर मुख्यतः जैसे डॉक्टर साहब ने बताया रेबीज है, इबोला वायरस है, फ्लू कोविड-19 है, फ्लू है, या साल्मोनेला है, प्लेग है, एंथ्रेक्स है,
1: कोविड-19 भी
0: जी जी उसी सीरीज में, क्योंकि कोविड-19 किसी टाइम चमगादड़ से ये मनुष्य में चमगादड़ के जो फीकल मैटर था उससे ये आया, तो कहीं ये सब उससे ये सब उससे रिलेटेड है
1: जी। डॉक्टर साहब वन हेल्थ अवधारणा क्या है और जूनोटिक रोगों की रोकथाम में इसकी क्या भूमिका है?
0: देखिए वन हेल्थ जो है वो उसको तीन कंपोनेंट इसमें वन हेल्थ में है, एक है ह्यूमन हेल्थ यानी मनुष्य का स्वास्थ्य, दूसरा है एनवायरमेंट हेल्थ यानी कि वातावरण का स्वास्थ्य, तीसरा है एनिमल हेल्थ यानी कि पशुओं का स्वास्थ्य। यदि जैसा मैंने आपको बताया कि 60% या 75% बीमारियां मनुष्य के अंदर जो हो रही हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं उसमें एनिमल इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का इंटरेक्शन, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ, तीनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उसके ऊपर अगर एक साथ मिलकर काम किया जाए तो उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो वन हेल्थ अप्रोच है
1: जी।
0: ये 2022 में एक कंसेप्ट हिंदुस्तान में आया था कि इसको लेके इस पे कार्य हुआ था, ताकि विभिन्न मंत्रालय लगभग 13-14 मंत्रालय या विभिन्न विभाग हैं जिसमें मिलके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो उस अप्रोच के माध्यम से इसमें काम हो रहा है
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें अभी आपसे जानने को हैं और लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। श्रोताओं को भी बता दें कि अगर इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो के नंबर्स है 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटरिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। और आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही अहम विषय पर कि आप कैसे, अगर जानवरों के आसपास हैं, पशु पक्षियों के आसपास हैं, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। ये है देवदत्त परसौलिया जी का, प्रताप विहार गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन्होंने धन्यवाद किया है, लेकिन देवदत्त जी अगर आप अपना कोई सवाल करते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल डॉक्टर साहब, आर टी शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन से एनिमल को भी क्या कोई रोग हो सकता है?
2: या बिल्कुल हो सकता है। आज मैं अपने वॉइसलेस जो क्रिएचर है उनके लिए बैठा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कल्प्रिट बनाया जाता है एनिमल्स को कि

0: 90% डिजीज़ इंसान को जानवर से होती है, पर मैं जब सोच बोलता हूँ कि जो कल्प्रेट हैं अभी ह्यूमन भी हैं, उन्होंने फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, जंगल ख़त्म कर दिए, वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने, उनको कोई ना फ्रूट के ट्री लगाए ना कुछ लिया, तो वो वाइल्ड लाइफ जब आपके अर्बन एरिया में आएंगी तो वो डिजीज़ तो फैलाएंगी, पर
1: जी
0: इसका जो कल्प्रेट है मुझे लगता है ह्यूमन खुद है। तो इसलिए हमें अपना फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ये पूरा क्लीन रखना चाहिए और उसका उन जानवरों के लिए भी जगह देना चाहिए, बिकॉज दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम ऑल्सो। और बहुत सी ऐसी डिजीजें हैं जो ह्यूमन से हमारे पेट में होती हैं, जैसे एक फ्लू है, नॉर्मल वायरल इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो इंसान जैसे सोर थ्रोट होता है, फिर किसी को खांसी होती है, तो अगर कोई पेट जिसकी इम्यूनिटी लो है, जो बहुत क्लोज इंटरेक्टिव में रहता है अपने पेट अपने ऑनर के साथ या उनके साथ सोते हैं, तो हमने पाया कि उनमें भी इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है और वो उनके भी सोर थ्रोट होते हैं, खांसी करने लग जाते हैं, वो 8-10 दो इससे सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन डिजीज़ तो है। अगर किसी को और कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है हमारे पेट को, तो इट कैन बिकम ए वेरी सीरियस इन्फेक्शन। तो आप ध्यान रखें कि जैसे कोरोना है, अगर कोविड में भी हमारे पेट्स को बहुत एक्सपोजर हुआ था और बहुत केसेस आए थे, तो ऐसे में ह्यूमन से एनिमल को भी डिजीज़ होती है,
1: हो
0: इसको
1: सकती
0: रिवर्स
1: है
0: जूनियोसिस बोलते हैं।
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास अनुज जी का मैसेज आया हुआ है, दिल्ली से ही लिख रहे हैं कि क्या बर्ड्स से भी इन्फेक्शन हो सकता
0: या
1: है?
0: बर्ड जैसे पिजन्स हैं, इनका जो लाइक शिट है उससे भी आपको कोक्सीडियोसिस एक इन्फेक्शन हो सकती है, तो फ्लॉक में रहते हैं तो एनी फंगल इन्फेक्शंस कैन बिकम ए सीरियस इन्फेक्शन इन द लंग्स, अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लो है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है कि वन हेल्थ मिशन जूनोटिक रोगों और महामारी के रोगों में कैसे मदद करता है रोकथाम के लिए?
2: देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये जो वन हेल्थ मिशन है, इसमें क्या है कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ एक साथ है, जैसे एक तो इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस, एकीकृत सर्वेलेंस निगरानी, मतलब सभी उसमें तीनों कंपोनेंट का, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट हेल्थ, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, या आप बाकी मनुष्य के हेल्थ है, उन तीनों का एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस, कहीं भी कोई बीमारी होगी उसका इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस करना। दूसरा, कहीं भी अगर जल्दी चेतावनी, कहीं भी अगर कुछ हो तो अर्ली वार्निंग क्रिएट करते हैं, कहीं भी अगर कुछ भी आउटब्रेक होगा उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्लस डाटा शेयरिंग, कहीं भी अगर कुछ होगा तो ये नहीं कि एक ही विभाग एक ही चीज़ देखेगा, आपस में सब साझा करेंगे कुछ भी अगर आउटपुट होगा तो, और प्लस रैपिड एक्शन सिस्टम, कहीं भी अगर कुछ होगा तो उसके तुरंत त्वरित कार्रवाई करी जाएगी इसमें। तो इसमें रेबीज हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, निपा जैसी जो बीमारियां हैं,

0: तो शुरुआत में इनको जैसे केरल में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तुरंत उसमें रैपिड एक्शन हुआ और काफ़ी हद तक बहुत जल्दी ही उसको कंट्रोल में कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक, बहुत सहयोगी देती है। जी
1: जी हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कौन है और उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी अनुराधा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको।
1: जी सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
2: और दोनों विशेषज्ञों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन।
1: जी
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे डॉग्स हैं, वो पालतू जो डॉग होते हैं घर पे, उनके बाल उड़ते रहते हैं सर, यदि खाद्य सामग्री के माध्यम से कभी पेट में चला जाए
1: जी,
2: तो क्या उससे भी कोई मतलब बीमारी हो सकती है?
3: हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। आप अगर पेट रखा है तो उसका ग्रूमिंग और हाइजीन ये तो रखना एक ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली इनहेल करते हैं, या कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसको अस्थमा है, या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कैट है उसके हेयर भी दैट कैन कॉज एग्रीवेट द अस्थमेटिक कंडीशन। सो अगर आप पेट को अच्छे क्लीन रखें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग जिनको अस्थमा है या एलर्जी है पेट से, तो उनको ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंजेशन से कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, बट अगर बहुत ज़्यादा आप इनहेल डाइजेस्ट कर लेते हैं या खा लेते हैं तो ऑब्वियसली दैट कैन लीड टू एनी ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन, बट ऐसा होता नहीं, मैंने देखा नहीं ऐसा।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है कृष्णा साहू जी का, रायपुर छत्तीसगढ़ से लिख रही हैं कि मेरा प्रश्न है कि रात को जो खाना बच जाता है उसे इनका जो बच्चा है वो दे आता है एनिमल्स को, तो ये पूछना चाहती हैं कि क्या कहीं उससे जैसे बासा खाना है तो उससे कहीं एनिमल्स को ख़तरा हो सकता है और उसके बाद एनिमल्स से इंसान को भी हो सकता है?
3: देखिए वो अब बहुत अच्छा जेस्चर है उनका, वो माइट बी एनिमल लवर, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा स्टेल फूड नहीं हो, बोन्स नहीं दें, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं हो, जो कि हमारे एनिमल्स को स्पेशली डॉग्स को, तो वो एनी सॉल्ट शुगर स्पाइसेस हम लाइक अवॉइड करना चाहते हैं, तो बोन्स देते हैं। किसी किसी डॉग्स को कभी कभी बोन मिलती है तो जस्ट स्वॉलो इट, दैट कैन कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और इंडाइजेशन। तो ये ध्यान अगर रखें आप तो आई थिंक इट्स ए गुड थिंग दैट वेस्ट जो है एटलीस्ट किसी के काम लगता है, और उसको अगर हाइजीन और फ्रेश खाना दें तो ज़्यादा बेटर।
1: जी डॉक्टर रसानिया जी आपके पास वापस आना चाहूँगी। आम नागरिक पशुपालक वन हेल्थ मिशन में अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है?
0: देखिए हर किसी का सहयोग इसमें आवश्यक है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई पशु पालने वाला हो, चाहे किसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच इस वन हेल्थ मिशन में चाहिए। तो उसमें क्या है, जो पशुपाल जो अपने कोई पशुपालक हैं या पालतू जानवर जो रखते हैं, उनका सबसे ज़रूरी काम है कि वो अपने जितने भी जानवर हैं पालतू जानवर, उनका नियमित टीकाकरण कराएँ। घर में यदि पशु पालते हैं तो, या कोई आपके मवेशी वगैरह हैं, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता बनाए रखें अपने पालतू मवेशियों के लिए भी और खुद के लिए भी। यदि कोई भी असामान्य बीमारी पशु में होती है या पक्षी में होती है, या आपके घर में कोई बीमारी ऐसी होती है, तो उसको सूचना तुरंत दें। जागरूकता इस विषय में सभी को फैलाएं, सभी को इस विषय में जानकारी दें, और कहीं ना कहीं जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला कि कहीं ना कहीं हम जो वन काट रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो पेड़ वेड़ सब काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कहीं जो एक रैपिड अर्बनाइजेशन, कहीं ना कहीं शहरीकरण जो हो रहा है, उसमें वो जो पशु जो जंगलों में रहते थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मनुष्य के संपर्क में आके वो बीमारियां जो कहीं जंगलों में रहती थी वो अब लोगों के घरों तक पहुँच रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोगी का सहयोग बहुत जरूरी है, तो ये इस रूप में सभी लोग इसमें मदद कर सकते हैं।
1: जी तो पर्यावरण भी सुरक्षित रखें, क्योंकि वजह हम खुद होते हैं अगर कोई समस्या पैदा होती है, तो क्योंकि चेन है हमारी जो बनी हुई, कहीं ना कहीं अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे लिए खुद वो मुसीबत सामने आ जाती है, ऐसा हम कोविड के टाइम पर देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है दिल्ली से परिधि जी का, ख़ास करके आप आर टी शर्मा सर से सवाल कर रही हैं कि मेरे घर में 5 वर्षों से बिल्ली है और कई सालों से ये उसकी देखभाल कर रही हैं, लेकिन इनका बताना है कि ना तो वो पिंजड़े में रहना पसंद करती है, ना ही उसको नहाना पसंद है, तो ऐसे में मतलब कैसे केयर की जाए इन जैसे एनिमल्स की, और क्या इससे कोई ख़तरा हो सकता है कि अगर ये साफ़ सुथरे ना रहें?
3: देखिए सबसे पहले हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द ह्यूमन बींग्स, लेकिन कैट आपने रखी है तो सबसे ज़्यादा वो उनको ग्रूमिंग ज़रूर करते रहें, शेडिंग होता है, वो कैट अपने आप को भी खुद साफ़ करती है, तो जब साफ

0: करते हैं तो बहुत से हेयर वो अपने इंजेस्ट कर लेते हैं, जब वो खा जाते हैं तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर वो खाना बंद करेंगे, फिर वो वॉमिट करने लगते हैं, किसी किसी टाइम तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें, आप रेगुलर ग्रूम अगर करते हैं और उसको रेगुलर वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं, और कैट को कभी भी केज में मत रखिए, दे आर इंडिपेंडेंट एनिमल, वैसे भी किसी एनिमल को केज में नहीं रखना चाहिए, दिस इज़ क्रूरिटी टू द एनिमल। तो अगर आपने कैट रखा है और उसको स्टरलाइज करवा दीजिए तो घर से बाहर नहीं जाएगी, जैसे डॉग्स एक परमानेंट पेट इनसाइड द हाउस होते हैं, ऐसे कैट्स नहीं होती हैं, बिकॉज जब वो वेन एवर दे कम ऑन देयर साइकिल दे ट्राई टू रन अवे, थोड़ा वाइल्ड इंस्टिंक्ट रहता है। तो कैट को अगर आपने रखा है तो उसको स्टरलाइज करवा के रखें, न्यूटर कर दें, तो वो घर से बाहर नहीं जाती, और बाहर जाएंगी तो इन्फेक्शन नहीं लेके आएंगी। तो आई थिंक आप 5 साल से रखा है तो मुझे लगता है अगले 10 साल और आपके साथ रहने वाली।
1: जी आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं सर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, नाम बताएं अपना।
2: दीदी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम जी, क्या सवाल है आपका?
2: हाँ, मेरा कहना है कि हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र में जब कुत्ता काटता है तो रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं, तो कुछ लोग एक ही इंजेक्शन लगवाते हैं, बाकी के इंजेक्शन नहीं लगवाते।
1: जी
2: तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या हमें पूरे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन से प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है? कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी
3: जी गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और सभी की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये कि जैसा डॉक्टर शर्मा ने पहले ही बताया था कि यदि कभी भी कोई भी जानवर, पालतू जानवर यदि वैक्सीनेटेड है तो कोई बात नहीं, यदि अनवैक्सीनेटेड जिसको टीकाकरण नहीं किया हुआ या कोई जंगली जानवर ने किसी को काटा है तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उसको, हम लोग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक में तो ये कि अगर उसको कहीं स्किन में जरा सा कहीं स्किन इंटैक्ट है, उसमें स्किन में कहीं कोई ज़्यादा कुछ नहीं आया, चाट लिया कुत्ते ने या किसी ने भी। दूसरा है कि कहीं स्किन में कहीं ना कहीं वो खरोंच आ गई, और तीसरा कहीं उसने अच्छी तरह से नोच लिया है आपके मास्क को। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह से इलाज है उसके अंदर। सबसे पहली चीज़ यदि कहीं ना कहीं अगर स्किन यदि छिल गई है या कहीं घाव आ गया है तो उसको 15 मिनट तक साबुन से और तेज रनिंग वाटर में पानी से उसको धोएं अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। उसका फायदा क्या है कि क्योंकि जो कीटाणु होता है, रेबीज का कीटाणु जो होता है, उसके अंदर एक साबुन से यदि उसको करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो जाता है। तो 15 मिनट तक लगातार उसको धोएं अच्छी तरह से, और उसके बाद में यदि तुरंत कहीं पास के नज़दीक का अस्पताल जहाँ पर टीकाकरण होता है तो टीके उसमें 2 तरह के लगते हैं। एक होता है जो कि खाल में लगाया जाता है, इंटरडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं, एक होता है जिसको मास्क के अंदर लगाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर जो वहाँ पर आपके एंटी रेबीज क्लिनिक है वहाँ पर कौन सी तरह का लगाया जा रहा है। तो उसमें जो खाल के अंदर टीका लगाया तो 4 टीके लगते हैं, और जो मगर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगता है वो 5 टीके लगते हैं। तो ये एक टीका कभी नहीं, वो डॉक्टर्स जो एंटी रेबीज क्लिनिक जो भी आपके नज़दीक में है तो वहाँ जाके जो भी डॉक्टर वहाँ पर है, ये जो उस क्लिनिक में लोग हैं, तो वहाँ पे एक टीका कभी नहीं, एक टीके से कभी कुछ नहीं काम चलता। वो एक टीका यदि उसमें 2 तरह का, एक तो होता है वैक्सीन, दूसरा होता है सीरम। सीरम तब लगाया जाता है जबकि खाल अगर छिल जाए और उसमें कहीं इन्फेक्शन होने के, वो ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि सीधे उस घाव में लगा दी जाती हैं
1: जी।
3: तो वो दोनों जरूरी हैं। तो इसलिए मगर कहीं ना कहीं आप रेबीज क्लिनिक, एंटी रेबीज क्लिनिक में जाकर जहाँ कुत्ता काटे का इलाज होता है वहाँ पर जाकर सरकारी उसमें जाके अपना इलाज कराएं जी।
1: डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि डॉग्स लवर जो होते हैं अक्सर बेड पर रखते हैं अपने डॉग्स को, साथ में सोते हैं उठते हैं और उनके आसपास हमेशा रहते हैं, साथ साथ कभी कभी मुंह भी चाट लेते हैं, तो इस तरीके की जो आदत है क्या कहीं ना कहीं मुसीबत का विषय है?
0: देखिए डॉग के सलाइवा में अगर कितना भी वो हाइजीनिक आप रखें तो थोड़ा इन्फेक्शन तो रहता है, जैसे साल्मोनेला या स्यूडोमोनस ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, अगर वो आपने उसने लिक कर लिया तो आपने ध्यान नहीं दिया या वॉश नहीं किया तो वो एक इन्फेक्शन दे सकते हैं। बट थोड़ा डिस्करेज करें अगर इफ़ ही इज़ लिकिंग योर फेस एंड, तो जस्ट गो एंड वॉश, वो एक अफेक्शन का जेस्चर तो ज़रूर है लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप यू हैव टू बी केयरफुल, जस्ट वॉश इट विद गुड सोप आफ्टर दिस जेस्चर।
1: जी, आलोका जी का नोएडा से सवाल है। इन्होंने

0: का है, इनके पास रैबिट है और उसकी देखभाल ये कैसे करें कि कहीं कोई दिक्कत उनको ना आए?
1: देखिए, रैबिट हमेशा पेयर में रखना चाहिए क्योंकि वो खुश रहते हैं। अगर आपने रखा है, वो इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो वो ज़्यादा खाते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो अगर आप उसको पेयर में रखेंगे तो खेलेंगे। उसको कभी केज में मत रखिए, घर में खेलने दीजिए। और ऐसी कोई भी पेस्ट इंसेक्टिसाइड कोई स्प्रे ना करें घर में जहाँ रहते हैं। उनको अच्छा खाना खिलाएं तो वो भी रेसिप्रोक्रेट करते हैं। दे आल्सो वो गिव अनकंडीशनल लव टू यू। वो आपको एक अच्छा कंपेनियन भी रहते हैं। और उसका ध्यान, अगर अच्छा खाना खा रहा है और आपने वेटनरी डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहें फॉर एनी स्किन प्रॉब्लम और एनी डेफिशिएंसी, तो आई थिंक दे लिव लॉन्गर।
2: मगर मैं इस एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि
1: सर,
2: अधिकतर जैसे जो पालतू रैबिट हुआ है, कुछ भी हुआ, कैट भी हुआ, एक चीज़ बहुत मैंने अधिकतर घरों में देखा है, वो जगह जगह पॉटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सफाई का ध्यान जरूर रखें।
1: बिल्कुल,
2: जो भी वो कहीं इस तरह कुछ भी अगर अपना मल मूत्र विसर्जन कर रहे हैं कहीं जगह पर ना करें, अगर करते हुए
1: जनरली कैट के लिए वी रिकमेंड कैट लिटर बॉक्स होता है, तो वो कैट इतनी ट्रेंड हो जाते हैं कि वहीं जाके करते हैं।
2: रैबिट,
1: इवन रैबिट भी अगर उनको एक ऐसा जगह बना दें, आप उसी ऐसे मैट हैं उसमें उसका यूरिन जहां लाइक न्यूज़पेपर बिछा दें, तो अगर वो सोक कर लेता थोड़ी देर बाद, वो हील जस्ट गो देयर एंड हील पास टूल देयर। तो ऐसे रैबिट्स भी ट्रेंड, इवन द बर्ड्स दे गेट ट्रेंड, उनके लिए ऐसी ऐसी जगह बनाई हुई है, नीचे वो पॉट रख देते हैं, वो वहीं जाके अपनी ड्रॉपिंग करते हैं। तो
2: ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है,
1: ट्रेनिंग की भी
2: आवश्यकता,
1: हाइजीन तो मेंटेन करना ही।
0: मनीषा जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है रांची से, ये लिख रही हैं कि ये 75 इयर्स ओल्ड हैं और बता रही हैं कि इनके पास एक बिल्ली है और इनको बुखार हुआ, उसके बाद उसको फीवर हो गया है, तो ये चाहती हैं कि उसको कैसे बचाया जाए, वो ज़्यादा दिक्कत में है इस समय।
1: देयर आर सम वायरल इन्फेक्शन जो ह्यूमन से अपने कैट्स को भी होती हैं, जो डॉग्स को भी होती हैं। अगर बेस्ट यही है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें और कैट को जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो देते रहें, जो उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहे, तो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जल्दी होगी नहीं। बट जो वायरस है कई बार म्यूटेट कर जाता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने समस्याओं का समाधान जान लिया, मैं जानना चाहूँगी कि पशु चिकित्सकों का वन हेल्थ में क्या योगदान हो सकता है?
1: देखिए, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे मेडिकोज हैं, दे हैव देयर ओन इशू, पर वेटनेरियंस दे नो वेरी क्लोज टू द एनिमल्स विच डिजीज दे आर स्प्रेडिंग और कहाँ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी फैल रही है। तो उसमें जैसे कोरोना था, तो कोरोना के साथ मेडिकोज के साथ मिलके वी कैन क्रिएट ए गुड वैक्सीन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। इवन डॉग्स के साथ लाइक उनके लिए वैक्सीन बना सकते हैं। और बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एनवायरमेंटलिस्ट भी इसमें होने चाहिए। तो ऐसे एक इंटेग्रेटेड अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, हमारे कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कौन है और आपका सवाल क्या है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब, आपको भी, आपको भी।
0: जी नमस्कार, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना।
3: मेरा नाम राजेंद्र है सर। मेरे को एक बार ये स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था उसको हाथ पे। तो पहले तो कई हॉस्पिटल गए, वो बोले ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं होता, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही मिलेगा।
0: जी,
3: तो फिर वो क्या क्या इवन, तो वो फिर जो अभी जुगल किशोर जी जो सफदरजंग के बड़े हैं, उन्होंने बोला है जो काटा हुआ डॉग का उसको टाके नहीं लगाने। तो मैं राम मनोहर लोहिया गया तो उन्होंने टाके लगा दिए थे इसमें। तो जुगल किशोर जी भी आए थे एक बार आपके शो में।
0: जी, तो क्या जानना क्या चाहते हैं, मतलब ये जो टाके आपको लगाए गए हैं वो हार्मफुल तो नहीं है, ये जानना चाहते हैं आप?
3: हाँ, ये वहाँ तो उस पर कभी कभी हो जाता है, वो कहते हैं इसका कोई एंटी इन्फेक्शन इंजेक्शन आता है, महंगा है वो, पड़े आपको।
0: जी
1: देखिए, वो अगर बाइट बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो कई बार डॉक्टर्स वहाँ रिकमेंड करते हैं, पर 99.9% उसको बंद नहीं करना चाहिए, जो भी रेबिट या कोई भी डॉग बाइट है, बिकॉज उसको 2 या 3-4 दिन के लिए खुला रखना। और उसको आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 15 मिनट सोप से क्लीन करते रहें, रनिंग वाटर में करें। और इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं, जो थोड़ा आपको बोला होगा एक्सपेंसिव है, वो जहाँ जख्म होता है उसके अंदर वो वैक्सीन लगाते हैं। एक नॉर्मल वैक्सीन लगाते हैं 0 डे 3rd डे 7th या 4 या 5 इंजेक्शन, वो डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है, वो बाइट कहाँ पे है और कितना डीप है वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टिच नहीं लगाना चाहिए, मे बी उस टाइम डॉक्टर साहब ने देखा होगा और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा हो तो इसलिए स्टिच लगाया होगा।

0: सर कुछ कहना चाह रहे थे आप भी?
1: नहीं,
0: अच्छा सर आगे बढ़ते हैं. और जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं, सभी समझ पा रहे हैं कि आज हम अपने भी सुरक्षा के लिए बातें कर रहे हैं. पशु पक्षियों से प्रेम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी भी सुरक्षा ज़रूरी है. और कैसे अवेयर आप रह सकते हैं अपने बारे में, इस बारे में हमारे दो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं. डॉक्टर साहब, पशु पक्षी पालकों और किसानों को जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
1: जैसा मैंने बताया कि नियमित टीकाकरण बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए भी. आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें पूरी तरह से. लोगों को जागरूक बनाएं, यदि कहीं भी पशुओं में कोई भी बीमारी, यदि आपको लग रहा है असाधारण बीमारी हो रही है, जो कि आपको लग रहा है कि जो उनको पहले कभी नहीं होती थी, या मनुष्य में भी कोई ऐसी बीमारी हो जो कि लग रहा है कि पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसे कोई नई लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाएं. क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आजकल नई नई बीमारी हो रही हैं, तो उसमें तुरंत इसका निदान हो सके, ये आपको थोड़ा अपने तरफ से कोशिश करनी है.
0: जी, हमें खुद जागरूक रहना होगा, ये डॉक्टर साहब लगातार हमें बता रहे हैं. फिलहाल अब यहाँ रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए, बाकी बातें इसके बाद.

0: और चले। शुद्ध वर्ण जूनोसिस डे पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 0112342 1080 और 0112342 1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं जो कि लगातार आपके आ रहे हैं 9868107070 पर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार द्वारा जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
1: जी, हमारे देश के अंदर जूनोटिक डिजीज के रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग रूप से चल रहे हैं। जैसे एक समस्या मुख्य रूप से समस्या थी रेबीज, तो राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत समय से चल रहा है। और जैसे मैंने बताया 2022 से नेशनल वन हेल्थ पॉलिसी, इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तीनों एनवायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ प्लस एनिमल हेल्थ तीनों के ऊपर चल रही है। देन एक है इंटीग्रेटेड IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इसके अलावा विभिन्न पशुपालन मंत्रालय के अंदर भी पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पहले कि आपका प्रश्न था पशु पक्षी और पालकों और किसानों को रोकथाम के लिए क्या क्या जरूरी है, उसमें कहीं कहीं उसमें एक और चीज़ है कि जो जितने किसान या जो पशुओं के साथ में देखभाल या डेयरी फार्मिंग में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करें, तो क्योंकि जो डस्ट वहाँ से निकलती है वो जो मृत पशु हैं उनको सही तरह से कैसे निपटाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसमें और नियमित टीकाकरण जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। जी,
0: बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास

0: इससे पहले कि आपको प्रश्न था पशु पक्षी और पालकों या किसानों को रोकथाम के लिए क्या क्या जरूरी है, इसमें कहीं कहीं उसमें एक और चीज़ है कि जो जितने किसान या जो पशुओं के साथ में देखभाल या डेयरी फार्मिंग में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करें, तो क्योंकि जो डस्ट वहाँ से निकलती है वो जो मृत पशु हैं उनको सही तरह से कैसे निपटाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसमें और नियमित टीकाकरण जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। जी
1: बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें भी पशु देखा जाता है कि सड़क पर बहुत बुरी तरह से पड़े हुए होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम चेन हैं एक और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब आपसे मेरा कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अन्य उभरती हुई जूनोटिक बीमारियों पर वर्तमान स्थिति क्या है इस समय?
0: देखिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और जितनी जूनोटिक बीमारी आजकल जब भी होती हैं तो नई बीमारी होती है, अधिकतर आउटब्रेक के रूप में होती है, मतलब अचानक से उभर के कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो समय समय पर आउटब्रेक के रूप में सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं नियमित निगरानी, पोल्ट्री फार्म जो आपके मुर्गा पालन या पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बायो सिक्योरिटी और रैपिड एक्शन एक्टिविटी कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनको ही मास्क पहन के या कहीं अपने दस्ताने वगैरह पहन के उसको प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जगह जो जगह हैं बर्ड फ्लू वगैरह इन सब ऐसी जगहों पर काफ़ी अचानक से बहुत जल्दी आउटब्रेक होता है इस तरह की बीमारी में।
1: जी हमारे पास मैसेज आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने सवाल किया है कि पिजन्स के अलावा क्या अन्य जो बर्ड्स हैं उनसे भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है?
2: या उनका ड्रॉपिंग से हो सकता है, तो इसलिए अगर आप हाइजीन रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा छोटे एरिया में ज़्यादा बर्ड नहीं रखें, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। तो आप पैरट्स जो भी जो रिकमेंड हमारे कंट्री में अलाउड हैं वो रखें, एग्जॉटिक एनिमल्स रख सकते हैं, पर जो हमारे इंडियन पैरट्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू कीप एज ए पेट, तो वो इलीगल है, वो नहीं आप रखें। बाकी आपने जो और एग्जॉटिक एनिमल बर्ड्स रखे हैं तो उनका जो केजेस हैं उनको अच्छी तरह क्लीन करते रहें, उनकी ड्रॉपिंग्स के लिए आजकल नए नए केज हैं, वो नीचे ट्रे होता है वो नीचे गिर जाती हैं, उसको आप क्लीन करते रहें। बाकी जितना हाइजीन रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो ऐसी कोई इन्फेक्शन नहीं होती ज़्यादा। तो आई थिंक कीप ऑन लविंग योर बर्ड्स।
1: जी डॉक्टर साहब, जूनोटिक रोगों के बारे में आम जनता में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, क्योंकि सही अगर कोई मशवरा दे तो ठीक है, अदरवाइज
2: भ्रांतियां तो बहुत है हमारे एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा है कि वी आर वेरी क्लोज टू द एनिमल, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो उसको ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो वो लगता है मेरे कोई अपशगुन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता कभी भी। वो एनिमल है, वो जगह उसको भी वो बिलोंग करता है, वो भी कहाँ रोम कर सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसे बिल्ली को रास्ता काट गई तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो एक ये अंधविश्वास है, उसको आप दूर रखें। और कभी डॉग आपको स्क्रैच कर ले तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि इससे रेबीज़ हो जाएगी, वैसा रेबीज़ नहीं होती। और अब कौवा बोलने लगे तो बोले घर में कोई गेस्ट आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एनिमल्स के साथ, बिकॉज हमारा सोसाइटी ऐसी है, वी लव एनिमल्स एंड वी शुड कीप ऑन लविंग आवर एनिमल्स ऑन आउटसाइड एंड इनसाइड द हाउस।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, सवाल सिर्फ लिखा है सर जो डॉग के काटने से रेबीज होता है।

की आज गुवाहाटी में बैठक शुरू। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस संबंध में ओडिशा सरकार ने भी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हुए हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक विदाई समारोह के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन। और खास सोमवार के दिन अल्फा जैन में हम लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी कि आप में से युवाओं में से मिलता है किसी खास को मौका यहाँ पर आने का और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात करने का। तो आज ये मौका मिला है माधवी तिवारी को। माधवी हमारे साथ स्टूडियो में है और आज वो किस मुद्दे को लेकर आई है, चलिए उनसे ही जानते हैं। माधवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। आप ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और आपको यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो कैसा महसूस कर रही हैं और किस मुद्दे पर बात करना चाहती हैं?
2: धन्यवाद मैम, FM रेनबो पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं जनरेशन जी के बारे में बात करना चाहती हूँ और उनको लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो दूर करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल माधवी, कहीं ना कहीं अलग अलग जनरेशन के लोगों को एक दूसरे से कुछ समस्या तो होती है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है और ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं रहा है। तो युवाओं को भी अगर ऐसा लगता है तो भाई आपकी बात यहाँ आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से माधवी पहुँचा रही है और माधवी इस मुद्दे को लेकर करने वाली हैं ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ।

नमस्कार दोस्तों, एफएम रेनबो के यूथ स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो डाइनिंग टेबल पे बहस बन जाता है, ऑफिस में भी छिड़ जाता है और सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड ही कर जाता है, और हाँ, हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे तो खैर रोज़ का किस्सा है। ये आजकल के बच्चे, सुना है ना कभी ना कभी, फैशन हो, डेटिंग हो, करियर के चॉइसेस हो या मीम्स में, हम जेंजी हमेशा किसी ना किसी स्कैनर के नीचे रहते हैं। तो सच में क्या हम इतने अलग हैं? क्या वाकई हम कम लॉयल हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या फिर हम सिर्फ एक जनरेशन है जो एक तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ खुद को ढाल रही है। अगले कुछ मिनटों में चलिए हमारी दुनिया में झांकते हैं, स्टीरियोटाइप से नहीं बल्कि समझ से। यह है यूथ स्पीक्स और आज का विषय है जेंजी, ट्रेंडी, मिसअंडरस्टूड या बस डिफरेंट।

तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो जेन जी है वो अपने हक की बात करती है कि हमारा हक लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे मन की बात को लोग समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए माधवी तिवारी आज हैं यहाँ रेनबो के स्टूडियो में और लेकर आई हैं जेन जी के दिल।

0: की बात तो माधवी, ये जेन जी आखिर क्या जनरेशन है? किस साल से किस साल के बीच तक की जनरेशन को जेन जी कहा जा रहा है?
1: दोस्तों, जब बात होती है जेन जी की, तो बात हो रही होती है हम जैसे लोगों की जो 90s के आखिरी से लेकर 2010 के शुरुआती सालों में पैदा हुए हों। हम पहली जनरेशन है जो पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी। जरा सोचिए, बूमर्स का वो दौर जब इंटरनेट पैक महंगा हुआ करता था, फोटो सोच समझ कर खींचनी पड़ती थी क्योंकि फिल्म रोल में लिमिटेड जगह होती थी, और रास्ता पूछने के लिए अजनबियों से बात करनी पड़ती थी। और अब बात करते समय हम, यानी जेन जी की, हम बड़े हुए स्मार्टफोन से गूगल मैप्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया के साथ। हमारे लिए टेक्नोलॉजी कोई टूल नहीं है, ये एक इन्वायरमेंट है, एक माहौल है जिसमें हम सांस लेते हैं। जैसे पहले की जनरेशन ने टेलीविज़न, टेलीफोन और कंप्यूटर के साथ खुद को ढाल लिया था, वैसे ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल नेटवर्किंग और इंस्टेंट कनेक्टिविटी को अपना लिया है।
0: बिल्कुल माधवी, इतनी तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में ढलना आसान तो नहीं है, लेकिन जेन जी इस काम को बखूबी कर पा रही है। लेकिन इस नई जनरेशन का दिल क्या चाहता है? इसीलिए माधवी आई है यहाँ पर नई जनरेशन की, जेन जी की, मन की बात लेकर।

0: चाहता है।
1: दोस्तों, हर जनरेशन का दिल कुछ अलग ही चाहता है और उसको ये भी लगता है कि जो दूसरी जनरेशन है वो कुछ गलत कर रही है। बात करूं अगर पहले की जनरेशन की, तो वो एक ऐसी दुनिया में पली बढ़ी है जहां पर स्टेबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एक जॉब, एक कंपनी, एक शहर और एक रूटीन, और सक्सेस का मतलब कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर इसे आजकल की जनरेशन से कंपेयर करें तो माधवी, तुम्हें क्या लगता है आजकल की जनरेशन क्या चाहती है?
2: मैम, मुझे लगता है हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां करियर तेजी से बदलते हैं, इंडस्ट्रीज रातों रात उभर आती है और स्किल्स सालों में ही पुराने पड़ जाते हैं। पहले के लोग के बारे में जॉब बदलना शायद बेचैनी की निशानी लगे, जबकि हमारे लिए वही बदलाव ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। पहले के लोगों को एक एक रुपया बचाना पड़ता था, वही हम शायद एक्सपीरियंस, कोर्सेज, ट्रैवल और पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल माधवी, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों जनरेशन में से कोई भी गलत नहीं है, बस दोनों के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं और उनकी परवरिश भी अलग अलग माहौल में हुई है, और शायद इसीलिए ये बहस हर दूसरे घर में चल रही है, डाइनिंग टेबल पर, फ़ोन पर, और कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, लेकिन गलत कोई भी नहीं है। फिलहाल रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा ये कम्युनिकेशन, हमारा ये मुद्दा जारी रहेगा और ये चर्चा भी रहेगी जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल्स की। हमें अक्सर कहा जाता है लेजी, ओवर सेंसिटिव, अटेंशन सीकिंग, फोन एडिक्टेड और शायद सबसे कॉमन लेवल नॉट लॉयल। चाहे रिश्ते हों, जॉब्स हों, दोस्ती हो या कमिटमेंट्स, लोगों को लगता है हम कहीं टिकते नहीं। पर एक सवाल पूछूं, क्या सच में ये हमारी प्रॉब्लम है या एक इंसानी फितरत जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से भी बहुत पहले मौजूद थी? आप ही सोचिए जरा।

0: बिल्कुल दोस्तों, ये नई जनरेशन में जिगरा तो बहुत है, क्यों माधवी?
1: यस मैम, सच कहूँ तो लोग अक्सर पुराने जमाने की बात ऐसे करते हैं जैसे तब सब कुछ परफेक्ट था, पर इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। दोस्तियाँ तब भी टूटती थी, रिश्ते तब भी खत्म होते थे, लोग तब भी करियर बदलते थे, लव ट्रायंगल्स डेटिंग ऐप से पहले भी होते थे, हार्ट ब्रेक सोशल मीडिया से पहले भी होता था, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट स्मार्टफोन से पहले भी होते थे। फर्क बस इतना है, पहले ये किस्से मोहल्ले तक सीमित रहते थे, आज ये ऑनलाइन ट्रेंड कर जाते हैं।
0: बिल्कुल माधवी, क्योंकि ना सोशल मीडिया ने चमत्कार किया है। ये किसी इंसानी व्यवहार से पैदा हुआ रिएक्शन नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया ने उसे विजिबल बना दिया है। सोशल मीडिया पे लोग अपनी पूरी कहानी, अपना पूरी दिनचर्या ही शेयर करने लगे हैं, और इसीलिए जब आजकल किसी का रिश्ता टूटता है, किसी का रिश्ता बनता है, तो सब कुछ पूरी दुनिया को पता चल जाता है इंटरनेट के ज़रिए। जबकि 30 साल पहले अगर वही चीज़ होती तो शायद सिर्फ आस पड़ोस को ही पता चलता था। तो व्यवहार तो नया नहीं है, लेकिन हाँ, अब सब कुछ बाहर आ जाता है, सबको पता लग जाता है। तो फिलहाल ये नई और पुरानी जनरेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है।

ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: बिल्कुल दोस्तों, ये नई जनरेशन उड़ना चाहती है चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो है जो हम भूल जाते हैं, वो ये कि जो ये नई जनरेशन है ना, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही, रिश्तों से ही नहीं जूझ रही है, बल्कि एक अनदेखा मुकाबला भी है जिससे ये हर रोज़ गुजर रहे हैं, और वो है कॉन्स्टेंट कंपेरिजन।
1: बिल्कुल मैम, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई बहुत फेमस हो रहा है, जरा सोचिए।
0: क्या सोचना है माधवी, यही कि ये जो सारे काम करने के बाद और इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई बस कंपेयर कर रहा है युवाओं को, और इस कंपैरिजन से ये जनरेशन हर रोज़ गुजर रही है, लेकिन फिर भी इनका जो हौसला है वो बरकरार है। क्यों माधवी?
1: बिल्कुल मैम, और फिर भी हम सीखते हैं, ढलते हैं, बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये असल में एक तरह की हिम्मत है?
0: बिल्कुल माधवी, कहीं ना कहीं ये हिम्मत ही है, क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं किसी और के साथ तो उनका मनोबल टूटने लगता है, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन चाहे कितना भी कंपैरिजन क्यों ना हो, आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, कुछ ना कुछ खासियत है, और उसी खासियत को आगे बढ़ाना है और एक नए आसमां पर उड़ते चले जाना है।

0: तभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ स्पीक्स और यूथ स्पीक्स में बात हो रही है जेन जी की। जी हाँ दोस्तों, इस बदलते हुए दौर में जेन जी बेहद खास है और उसको खास क्या बनाता है ये बता रहे हैं माधवी तिवारी। तो माधवी, क्या ऐसा बदलाव है जो जेन जी लेकर आई है?
3: मैम, हम जेन जी कुछ जबरदस्त बदलाव लेकर आए हैं। हम मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करते हैं, हम अनहेल्दी ट्रेडिशंस पर सवाल उठाते हैं, हम वर्क लाइफ बैलेंस को वैल्यू देते हैं, हम ऑनलाइन नई नई स्किल्स सीखते हैं, हम अपने बेडरूम से बिजनेस खड़े कर देते हैं, हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम उससे क्रिएट भी करते हैं।
2: बिल्कुल माधवी, जब हाथ में स्मार्टफोन हो तो वो स्मार्टफोन हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्लासरूम बन जाता है, कभी कभी वो न्यूज़ रूम की तरह भी काम करता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बन जाता है या फिर एक डिज़ाइन एजेंसी की तरह भी काम करता है, और कभी कभी तो लोग अपना स्टार्टअप ही इस फ़ोन के बलबूते खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल कमाल की बात है ना, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसने बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया है और ये जो नए स्किल हैं वो सीखे हैं नई जनरेशन ने, जेन जी ने, और इसी के बलबूते वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है।

समय हो गया है 4:52 और यूथ स्पीक्स में माधवी तिवारी है आपके साथ और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और हम बात कर रहे हैं नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच होने वाले टकराव की, उनकी खासियतों की। और ये मुद्दा जो हर जगह डिबेट का विषय बना हुआ है, इस पर हो रही है आज आपके अपने यूथ स्पीक्स में बेहद ही खास चर्चा।

0: तो दोस्तों समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले हम ये बात भी कर ही लेते हैं कि आखिर ये नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आखिर ऐसा क्या है माधवी जो ये पुरानी जनरेशन से सीखा जा सकता है, बताओ माधवी।
1: मैम, पुरानी जनरेशन भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल अडैप्टेबिलिटी और नए आइडियाज़ के लिए खुलापन सिखाती हैं, और पुराने आउटडेटेड सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत भी तो देती हैं, क्योंकि प्रोग्रेस तभी होगा जब एक्सपीरियंस इनोवेशन से मिलेगा।
0: बिल्कुल माधवी, और कहीं ना कहीं एक दूसरी जनरेशन से हमें सीखने की ज़रूरत है। जहां पुरानी लोगों के पास एक्सपीरियंस है और उससे सीखने की ज़रूरत है, वहीं नए लोगों के पास नए स्किल्स हैं और कहीं ना कहीं कुछ नया करने की हसरत है, नया जोश है, नई उमंग है। इसीलिए चाहे जनरेशन कोई भी हो, लेकिन उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी हैं, अपनी अपनी अलग कहानियाँ हैं। इसीलिए साथ मिलकर चलने में ही है भलाई। तो माधवी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और नई जनरेशन के बारे में उनकी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें भी ये जान के अच्छा लगा कि नई जनरेशन भी हमसे कुछ सीख सकती है और ये बात वो मानती है। तो फिलहाल मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे शालिनी और माधवी तिवारी को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सब

अब आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सुनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवा, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, जिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड़, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी, गट्टीबुड़ा, करडेगा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीतापाकेर, सोनाजोरी, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 115 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, गेदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि

0: विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
3: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
4: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर और रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर युवावाणी कार्यक्रम में आजकल का विषय होगा बोलना भी जरूरी है। सर्जना में आप सुनेंगे अक्षय शर्मा का कविता पाठ और होगा इंद्रधनुष। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी स्वाति देशपांडे। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा खेती में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव और ओकर निदान। आज की सलाह में अश्वगंधा और एलोवेरा की खेती, इस विषय पर डॉक्टर सत्यप्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सागरा पांडा दुर्ग देंगे जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद आमिर खां का गाया राग दरबारी में ख्याल। समय होगा रात 10:30। पुरानी फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर आप सुनेंगे रात 10:00। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर। मोर भुइयां कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर वार्ता आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा। सुनिएगा श्री शेष नारायण गुप्ता की कहानी नोनी के पांक और आप सुनेंगे श्रीमती मधु तिवारी का कविता पाठ। संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। लोक संगीत कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर। इस कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे रजनी रजक और साथी। समूह गान शिक्षा में कल सुबह 11:05 पर भाषा होगी उड़िया और इसके पश्चात आप सुनेंगे सुगम संगीत। घर आंगन कार्यक्रम कल दोपहर 1:30 पर। आज के गोट का विषय होगा जंगल की सुरक्षा जीवन की रक्षा। आप सुनेंगे डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर की कहानी नंदिनी और होंगी कामकाज की बातें। युवावाणी कार्यक्रम कल शाम 5:10 पर। अपन गोट का विषय होगा अनुशासन की शुरुआत खुद ले करो। सुनिएगा सवाल जवाब और माटी के गीत। कल शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा खरीफ माँ फसल चक्र अपनावन श्री अन्न मिलेट लगावन। कल शाम 7:30 पर किसानवाणी में हेलो किसानवाणी का विषय होगा बरसात के मौसम में आवारा पशुओं का प्रबंधन। डॉक्टर पदम चंद जैन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार रायपुर देंगे जानकारी। और धरती की पुकार ये रूपक आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। लेखक और प्रस्तुतकर्ता दीपक हटवार। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: खामोशी हर बार समझदारी नहीं होती है, कभी कभी सच कहना भी जिम्मेदारी होती है।
1: जो आवाज उठती है वही बदलाव लाती है, और जो आवाज चुप रह जाती है अक्सर वही सबसे ज्यादा पछताती है। इन्हीं विचारों के साथ आइए आगाज करते हैं आज की युववाणी का। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त काजल साहू।
0: और मैं हूँ विदिशा। तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: काजल, तुम्हें याद है बचपन में ना हमें सिखाया जाता था
1: अच्छा।
0: कि बड़ों के सामने कम बोलो, झगड़ों से तो बिल्कुल दूर रहो। लेकिन आज लगता है कि कई बार हम जरूरत होने पर भी चुप रह जाते हैं, चाहे किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी दोस्त को मदद चाहिए हो, या फिर अपने मन की बात कहनी हो।
1: बिल्कुल सही कहा विदिशा, चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार हमारी एक आवाज किसी का आत्मविश्वास लौटा सकती है, किसी के साथ हो रहे अन्याय को रोक सकती है और किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए सही समय पर सही बात कहना भी उतना ही जरूरी है जितना सही काम करना।
0: दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा उन लोगों ने शुरू किया जिन्होंने बोलने का साहस किया है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई हो, या हो शिक्षा की बात। और समानता की आवाज, हर परिवर्तन की शुरुआत किसी एक व्यक्ति की आवाज से ही जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों आज भी बहुत से लोग डर की वजह से चुप रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटी सी आवाज से ही शुरू होती है।
0: दोस्तों, बोलना सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी होता है। अगर आप तनाव में हो, परेशान हो, या किसी बात से दुखी हो, तो अपनी बात अपने माता पिता, शिक्षक, मित्र या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर साझा करें। मन की बात दबाने से समस्या बढ़ती है और बात करने से हल निकलता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये भी उतना ही जरूरी है जितना बोलने का, मतलब किसी का अपमान नहीं करना। ज्यादा बोलना भी हमें भारी पड़ सकता है। हमारी भाषा में सम्मान हो, विचारों में संवेदनशीलता हो और उद्देश्य का समाधान हो, क्योंकि शब्द जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा काजल। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल विदिशा, हमेशा दोस्तों सच बोलिए लेकिन शालीनता के साथ। अपनी राय रखिए लेकिन दूसरों की राय का भी सम्मान कीजिए। यही एक जागरूक और जिम्मेदार युवा की असली पहचान है।
0: दोस्तों, अगर स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल या समाज में किसी के साथ भेदभाव, हिंसा या गलत व्यवहार होता देखें तो चुप मत रहिए। सही मंच पर अपनी बात रखिए, संबंधित लोगों से जानकारी दीजिए और पीड़ित के साथ दीजिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, चुप्पी अगर अन्याय का साथ निभाए तो आवाज बनना जरूरी है। सच की राह कठिन ही सही, पर उस राह पर चलना जरूरी है।
0: हाँ काजल, सचमुच आवाज वो नहीं जो ऊंची हो, बल्कि वह है जो सही के लिए उठे और किसी के जीवन में उम्मीद जगाए।
1: दोस्तों याद रखिए, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे कहने और करने का साहस भी चाहिए।
0: तो दोस्तों, आज हम ये छोटा सा संकल्प ले कि सच बोलना जरूरी होगा, वहां हम चुप नहीं रहेंगे। अपनी आवाज का इस्तेमाल शिकायत के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए जरूर करेंगे।
1: साथियों, सकारात्मकता का बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि हमारी आवाज ही हमारी पहचान है।
0: और जब हम युवा सही बात के लिए बोलते हैं तभी समाज आगे बढ़ता है।
1: मुस्कुराइए, जागरूक रहिए, अपनी आवाज की ताकत पहचानिए
0: और याद रखिए, सही समय पर सही बात करना ही सच्ची जिम्मेदारी है, क्योंकि बोलना जरूरी है।

गजल से मुलाकात होती है। युगवाणी सुन रहे मेरे सभी दोस्तों को अक्षय का नमस्कार। मैं अपनी कुछ रचनाएं आप लोगों के सामने रखता हूं। सुना है वो हर घड़ी हर पहर देखता है, सुना है वो हर घड़ी हर पहर देखता है, खुदा ही जाने कि खुदा किधर देखता है। मंजिल तो खूबसूरत होगी ही मगर, मंजिल तो खूबसूरत होगी ही मगर, सच्चा बशर सच्चा सफर देखता है, सच्चा बशर सच्चा सफर देखता है, और कैसे यकीन करूं उसकी मोहब्बत सच्ची है, कैसे यकीन करूं उसकी मोहब्बत सच्ची है, इजहार जब करूं वो इधर उधर देखता है, इजहार जब करूं वो इधर उधर देखता है, और वो डूबते सूरज के साथ डुबा बैठा सब कुछ, वो डूबते सूरज के साथ डुबा बैठा सब कुछ, कोई नई उम्मीद हर शहर देखता है, कोई नई उम्मीद हर शहर देखता है, कभी कोई नापाक हरकत की सोचूं भी अगर, कभी कोई नापाक हरकत की सोचूं भी अगर, आवाज आती है वो हर घड़ी हर पहर देखता है, सुना है वो हर घड़ी हर पहर देखता है। अब मैं अपनी अगली रचना आप लोग के सामने रखता हूँ, सुने। लोग मुर्दा समझते हैं नज़र में रहो, लोग मुर्दा समझते हैं नज़र में रहो, अखबार सारे झूठे हैं पर खबर में रहो, अखबार सारे झूठे हैं पर खबर में रहो, और शेर देखे कि दिल में रहते रहते तुमने गुजारे कई बरस, दिल में रहते रहते तुमने गुजारे कई बरस, अब दिल भी चाहता है कि मेरे घर में रहो, अब दिल भी चाहता है कि मेरे घर में रहो, ये रास्ते ये आंधी ये तूफा सब साथी है, ये रास्ते ये आंधी ये तूफा सब साथी है, मंजिल चाहिए मेरे दोस्त तो सफ़र में रहो, मंजिल चाहिए मेरे दोस्त तो सफ़र में रहो, लोग मुर्दा समझते हैं नज़र में रहो, अखबार सारे झूठे हैं पर खबर में रहो। ऐसा एक शेर देखिए दोस्तों।

मोहब्बत। एक गजल का एक मतलब एक शेर और देखे दोस्तों, कि साथ चलना हमारा जो मुमकिन नहीं।

कुछ ना बोलना कुछ बोलने से बड़ी बात है, पर हाँ शायद थोड़ा लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने तुमको समंदर सा जिया, दरिया सा लिखा और कुछ बूंद ही कह पाया। एक मतलब एक शेर और देखे।

0: एक छोटी सी नज्म मैं आपके सामने रखता हूँ, सुने। न जा कहीं मेरे पास बैठ, थोड़ा रुक भी जा कुछ देर तक, कुछ बोल ना, ना हाथ पकड़, बस मुस्कुरा कुछ देर तक। न हाल बता न हाल पूछ, बस खामोशी सुन मेरे अंदर की। ना इश्क कर ना दोस्त बन, बस साथ चल कुछ देर तक। तुझे पाया मैंने ये भ्रम रहे, तेरी याद में आंखें नम रहे। हम रहेंगे साथ ये झूठ बोल, बस झूठ बोल कुछ देर तक। दे रास्ता मुझे जाने का, दे हिम्मत कि ना मैं लौट सकूं। बोसा दे मेरे माथे पर, कर विजय तिलक कुछ देर तक। एक छोटी सी नज्म और देखिए दोस्तों। सर्दियां आ जाने पर जब वो मेरी तलाश में निकलेगा, तो वो मुझे कभी सूरज के सामने नहीं ढूंढेगा। वो ढूंढेगा मुझे सूरज के ठीक पीछे, एक सफ़ेद गोले के ठीक सामने, क्योंकि वो जानता है मैं शांत समंदर में कश्ती नहीं उतारता। क्योंकि वो जानता है मैं खुद को यूं आसा मौत नहीं मारता। वो जानता है बढ़ता अहंकार मेरा, तो तुम डरो नहीं मेरे ना मिलने पर। मेरे ना मिलने पर तुम उसे ढूंढना, क्योंकि उसे पता है पता मेरा। एक छोटी सी नज्म मैं आपके सामने रखता हूँ, सुने। हो गए हो तुम तैयार, क्या पहनोगे आज? पर्चियाँ सारी रख ली हैं, सारी कविताएं फिर देख ली हैं। हमेशा की तरह हंसते हुए पढ़ना, बस ज़्यादा आसमां में नहीं चढ़ना। चलो अब बस भी करो, कितना सवाल करोगे? मैं ऑफलाइन हो जाऊं कि तुम वीडियो कॉल करोगे? हाँ बस थोड़े बाल बिखरे हैं, उन्हें संवार लेना और मेरी तरफ से खुद की नज़र उतार लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
1: क्रम सर्जना में अभी आप सुन रहे थे अक्षय शर्मा की कविताएं। काजल, छुट्टियां तो खत्म और काम चालू, फिर से वही रोज की दौड़ा भागी।
2: और आज है सोमवार, और सोमवार को हम श्रोता साथियों के बीच बैठे हैं इतनी खूबसूरत मौसम में, तो इतनी थकान किस बात की विदिशा? हो जाओ तैयार एनर्जी के साथ।
1: हाँ, आज तो हमारा विशेष क्रम भी है।
2: बिल्कुल साथियों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे विशेष क्रम इंद्रधनुष की।
1: आज के विशेष क्रम इंद्रधनुष में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस सितारे की, जिनकी एनर्जी ने बॉलीवुड को एक नई परिभाषा दी, जिनके कदमों में जादू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह की।
2: हिंदी सिनेमा का वो नाम जो हीरो भी है और विलन भी, और अपनी जिंदा दिली से हर किरदार में जान फूंक देते हैं। आज हम आपको उनके सफर के कुछ

0: अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे, कुछ ऐसे गीत सुनवाएंगे जो आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं, और उस कलाकार की बात करेंगे जो हर बार खुद को नए अंदाज में पेश करते हैं।
1: जी हाँ, रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ। रणवीर सिंह का फिल्मों में आने का सपना बचपन से ही था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले विज्ञापन एजेंसियों में भी काम किया था।
0: साथियों, वैसे तो उनके पिता उन्हें अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में था पर्दे का जादू। एक ऐसे परिवार से आते जहां फिल्मों से कोई खास नाता नहीं था, उन्होंने अपने हुनर और लगन से ये मुकाम हासिल किया।
1: और फिर 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला।
0: दोस्तों, उनके स्टाइल और एनर्जी ने सबका दिल जीत लिया, तो आइए सुनते हैं उस गाने को जिसने रणवीर सिंह की दस्तक को सुपरहिट बनाते हुए कामयाबी के उस शिखर पर उन्हें पहुंचा दिया।

0: दोस्तों आज मौसम कुछ अलग है, बादल जैसे कुछ कहना चाहते हूँ और हवाएं कुछ सुनाना। बारिश की ये बूंदे जैसे किसी की भूली हुई याद को फिर से छू रही हो मन के किसी कोने में।
1: और ऐसे में एक तस्वीर उभरती है पेशवा बाजीराव की वर्दी में, हाथ में तलवार, आंखों में जीत की चमक और चेहरे पर वो मुस्कान जो हर दिल को जीत ले।
0: दोस्तों वो सीन तो आपको याद ही होगा, फिल्म था बाजीराव मस्तानी और स्क्रीन पर थे रणवीर सिंह पूरे जोश में जीत का जश्न मनाते हुए, जैसे पूरी दुनिया उनके ही कदमों में हो।
1: और वो कोई आम डांस नहीं था दोस्तों, वो एक योद्धा की जीत का ऐलान था, एक ऐसे कलाकार का करिश्मा जो हर रोल को अपना बना लेते हैं।
0: बिल्कुल, रणवीर सिंह ने हमेशा अपने अभिनय में एक अलग ऊर्जा रखी। वो हीरो तो है लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज के, उनके कदम बोलते हैं, उनकी आंखें चीखती है और हर गाना एक जश्न बन जाता है। और इस गाने में वो सिर्फ एक किरदार नहीं थे, वो एक तूफान थे, एक विजयी सेनापति।
1: तो आइए इस जश्न को थोड़ा और बढ़ने दीजिए और सुनिए वो गाना जो हर दिल को छू गया।

0: दोस्तों, ये गाना सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक जोश था, एक योद्धा की आत्मा की झलक, और इसमें रणवीर सिंह का वो जलवा जो आज भी हमें हमारे दिलों में बसा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा, रणवीर सिंह के हर फिल्म में कुछ तो बात है। साथियों, 2010 से लेकर आज तक का सफर रणवीर सिंह के नाम रहा। एक के बाद एक हिट फिल्में, गोलियों की रासलीला, रामलीला, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय, सिम्बा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, या धुरंधर, और भी कई।
0: और इतनी फिल्मों में उनका हर किरदार, हर संवाद, हर चीज में एक जोश, एक अलगपन, और सबसे खास बात, वो इतने एनर्जेटिक हैं कि उतने ही संवेदनशील कलाकार भी हैं।
1: पर्दे का ये नायक असल जिंदगी में भी अपनी पत्नी दीपिका और बेटी दुआ के साथ एक परफेक्ट फैमिली मैन है। उनकी बेबाक व्यक्तित्व, उनका अनोखा फैशन सेंस और उनकी जुनून, सब कुछ उन्हें अलग बनाता है।
0: तो इसी बात पर सुनते हैं, आइए, रणवीर सिंह की फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना।

0: साथियों, रणवीर सिंह ने गली बॉय में एक स्ट्रीट रैपर का किरदार निभाकर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। उस फिल्म के गाने अपना टाइम आएगा ने तो हर युवा के दिल में जगह बना ली थी।
1: और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का खौफनाक और पागलपन से भरा किरदार, खली बली गाने में उनकी आंखों में जो दीवानगी थी वो कमाल की थी।
0: साथियों, 2025 में आई फिल्म धुरंधर ने तो उनके करियर को नई ऊंचाई दी। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई। वाकई धुरंधर को धुरंधर मिली।
1: तो दोस्तों, आज की इस जोशीली शाम में हम साथ बैठे एक एनर्जी के सफर में, जहां गीत था, जोश था और थे रणवीर सिंह।
0: उनकी आंखों की चमक, उनके निभाए किरदारों की गहराई और गानों की धड़कन, सब कुछ जैसे फिर से हमने जिया है और जीते हैं इस गाने को भी।

0: वाह क्या बात है, गन्ना गुड़िया की वही मस्ती, वही परिवार का प्यार और रणवीर सिंह की बेमिसाल एनर्जी, यही तो उनकी पहचान है। चाहे कॉमेडी हो, रोमांस हो या फिर इमोशनल किरदार, रणवीर हर रंग में पूरी तरह ढल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और रणवीर सिंह की यही खासियत उन्हें अपने दौर के सबसे अलग कलाकारों में शामिल करती है। हर फिल्म के साथ वे खुद को एक नए अंदाज में पेश करते हैं। उनकी मेहनत, उनका आत्मविश्वास और अपने काम के लिए उनका जुनून लाखों युवाओं को प्रेरित करता है।
0: तो दोस्तों, अब वक्त है सुनने का एक और ऐसा गीत जिसमें रणवीर सिंह के जोश और उनके अनोखे अंदाज को एक नई पहचान दी है। ये गीत आज भी हर जश्न की जान बन जाती है।
1: तो दोस्तों, रेडियो सेट में वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए थिरकने के लिए।

0: दोस्तों, रणवीर सिंह की सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसी भी किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं करते, बल्कि उस किरदार को जीते भी हैं। यही वजह है कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और लोगों को खुलकर जीने की प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल विदिशा, और तुम जानती हो वो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं। अक्सर वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते नजर आते हैं और एक दूसरे की सफलता पर खुशी जाहिर करते भी दिखाई देते हैं। रणवीर सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है साथियों कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें और चुनौतियों से ना डरें तो मंजिल जरूर मिलती है। सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन लगातार कोशिश करने वालों के कदम कभी नहीं रुकते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है रणवीर सिंह की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके अंदर कुछ नया करने के उत्साह भी उन्होंने जगाया होगा।
0: दोस्तों, इसी के साथ आज का ये खूबसूरत सफर यहीं तक।
1: साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युववाणी होगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत।
0: उम्मीद है कि आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते, वो अपनी कला से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बना लेते हैं।
1: साथियों, पत्र आप हमें अपने कार्यक्रम की सराहना के लिए ज़रूर भेजिएगा। और इसी के साथ आपकी रेडियो दोस्त काजल साहू
0: और विदिशा वर्मा को
1: दीजिए इजाज़त। स्वीकार हमारा
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6 बजने को हैं, समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यू

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह केहन के सहकारी आंदोलन सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त

0: लगातार मौजूद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के 5वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। ए मौका में उमन किहिन के सहकारी आंदोलन सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश कर थे। श्री शाह किहिन के राष्ट्रीय स्तर के 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाए गए है। उमन किहिन के सहकारिता मंत्रालय पाछू 5 ले सहकारिता के माध्यम ले समृद्धि के मंत्र के पालन करत है, जिखे सेती मंत्रालय डहार ले लाखों लोगन के जीवन में बदलाव आए है। केंद्रीय मंत्री है किसान मन ले जैविक कृषि उत्पाद के उत्पादन बढ़ाए और रासायनिक उर्वरक के संग्रह कीटनाशक के उपयोग कम करे के अपील करीन। श्री शाह किहिन के पाछू 5 में सहकारी प्रणाली ला आधुनिक पारदर्शी प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाए के दिशा में सराहनीय काम करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में राखे गए एक ठिन कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास कार्य के भूमि पूजन करें। इमा छात्र छात्रा मन पर आधुनिक छात्रावास कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सक मन के संग्रह कर्मचारी मन के आवासीय परिसर समेत आने आने निर्माण काम शामिल है। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हकीन कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करही। ये परियोजना प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ला नवा ऊंचाई दीही और मरीज विद्यार्थी और चिकित्सक मन ला एकर फायदा मिलही। कार्यक्रम ला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो संबोधित करें। बता दें कि परियोजना के पहली चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास बनाए जाही, उन्हें दूसरिया चरण में कैंसर भवन के विस्तार करे जाही। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में श्रद्धांजलि अर्पित करत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है डॉ मुखर्जी के जयंती में ओमनला श्रद्धांजलि देवत ओमनला साहस राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत प्रतीक बताए हैं। श्री मोदी है एक दिन आलेख मकहीन कि डॉ मुखर्जी के जीवन अखंड भारत पर उखर अटल प्रतिबद्धता के प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका है आज लोकभवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में उखर चित्र में पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दिन। राज्यपाल हकीन है कि डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र के एकता अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य पर समर्पण जम्मू देशवासी मन पर प्रेरणा स्रोत है। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए गए रद्दा में अग्रसर होवत हमन विकसित और सशक्त भारत के निर्माण करबो। रायपुर में रखे गए 2 के चिंतन शिविर 3.0 काली सिरागे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि शिविर ले मिले सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन ला नवा दिशा दीही। उमन किहिन के पाछू चिंतन सिवन के सुझाव के आधार में मंत्रालय में ई ऑफिस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे पहल सफलतापूर्वक लागू करेगे है। मुख्यमंत्री हकीन के इहुदारी मिले सुझाव ला जल्दी ही नीति और प्रशासनिक सुधार के रूप में लागू करे जाही। शिविर में सुशासन तकनीक कृषि पर्यटन नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषय ऊपर विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मन विचार विमर्श करें। गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल के नाव अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी हुई। ये घोषणा काली स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव व विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में रखे गए अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान करें। ए मौका में उमन किहिन कि डॉक्टर तीजनबाई है अपन कला के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नवा पहचान दिलाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाए के आदेश जारी कर दे है।

0: योजना के तहत निम्न दाब घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ता मन ल बिजली बिल के मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दे जाते। पावर कंपनी ह पात्र उपभोक्ता मन ले 30 सितंबर तक योजना के फायदा ले के अपील करीन है। बता दन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के बेरा एक महीना बढ़ाए के घोषणा करे रहीन। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा उर्वरक भंडारण करे गए है, जो पाछू साल के तुलना में ज्यादा है। जुलाई में छत्तीसगढ़ ल 46,500 टन डीएपी के अतिरिक्त आपूर्ति घलो मिले है। अब तक किसान मन ल 7,27,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा खाद बांटे जा चुके हैं, जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक के भंडार अभी भी मौजूद है। सरकार ह कहे है कि खरीफ सीजन में किसान मन ल खाद के कोनो कमी नहीं होए दे जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ह राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट UG के आवेदन फीस लौटाए बर बैंक खाता विवरण अपडेट करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ह बताइस कि जौन उम्मीदवार मन अपन बैंक खाता विवरण के पुष्टि कर दे है, ओमन बर रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुके है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवार मन ही अपन बैंक विवरण में सुधार या अपडेट करीन है। नगरीय प्रशासन विभाग ह प्रदेश के जम्मू निकाय में बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल में कराए के निर्देश दे है। विभाग इस संबंध में जम्मू नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मल्ल परिपत्र जारी करे है। प्रदेश के अधिकांश जिला मन में पाछू 2 दिन ले होवत सरलग बारिश के सेति सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए है। उन्हें कई ठिन नदियां नरवा उफान में है। दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के जल स्तर बाढ़े के सेति महमरा एनिकट के तीर 5 फीट ऊपर पानी बोहा थे, जिका सेति नदिया तीर के जगह मन में सतर्कता बढ़ा दे गए है। सुरक्षा ला देखत प्रशासन है महमरा गांव जाने वाला रद्दा और पुलगांव स्थित छोटे पुलिया ला अवई जवई बर बंद कर दे है। उन्हें थनौद ले लेके अरसनारा तक नदिया तीर बसे गांव के लोगन मल्ला नदिया ले दूर रहे बर चेताए गए है। कोनो भी आपात स्थिति ले निपटे बर SDRF की टीम तैनात है। उन्हें रायगढ़ जिला में पाछू 36 घंटा ले रुक रुक के हुवत बारिश के सेती कई जगह मन में सड़क मन में पानी भरे के संगे संग निचला बस्ती मन में स्थित घर में पानी भर गए है। पानी भरे के सेती प्रशासन हा केलो बांध के 4 गेट खोल दे है, जेखर ले नदी के जल स्तर बाढ़ गए है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में काली 7 जुलाई के संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। इ मेला के माध्यम ले निजी क्षेत्र के आने आने कंपनी के लगभग 1500 ले ज्यादा पद ऊपर भर्ती करे जाही। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करके जरूरी दस्तावेज के साथ मेला में शामिल हो सकत हैं। कोरबा पुलिस पाछू 1 जुलाई के छुरीकला स्थित सोनार दुकान में हुए लूट के मामला में 2 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। उन्हें 1 जिन दूसर आरोपी अभी भी फरार है, जेखर तलाश करे जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी है आज एक दिन पत्रकार वार्ता में बताइन कि तीनों आरोपी पहली हत्या, दुष्कर्म और दूसर गंभीर मामला में जेल की सजा काट चुके हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहिन के सहकारी आंदोलन सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें। और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। इखरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां संप्राप्तवान्। केंद्रीय गृह

0: और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रावोचत यत अस्मिन् वर्षे भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते। एतानि यानानि नियमितरूपेण प्रचलद्भ्यः 800+ रेलयानेभ्यः अतिरिच्य भविष्यन्ति, येन यात्रिणां गतागतं सौकर्यमयं स्यात्। अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह सम्भाषमाणः श्रीवैष्णवः प्रोदीरितवान् यत् रथयात्रायाः सुचारु सञ्चालनं, सुरक्षितप्रबन्धनं च सुनिश्चेतुं सः अद्यैव रेलविभागीय सिद्धतायाः उच्चस्तरीयां समीक्षां विधास्यति।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यसभायाः त्रिषु आसनेषु उपनिर्वाचनस्य घोषणा कृता अस्ति। राज्यसभायाः सदस्यानां सुखेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देवः, प्रकाश चिक बड़ाईकः इत्येतेषां त्यागपत्रस्य अनन्तरं स्थानानि रिक्तानि आसन्। निर्वाचनस्य संचेतना श्वः प्रकाशिता भविष्यति। नामांकनस्य अन्तिमा तिथिः जुलाई मासस्य 14 दिनांकं यावत् अस्ति। जुलाई मासस्य 15 दिनांके नामांकनानां परीक्षणं भविष्यति। एतेषां आसनानां कृते जुलाई मासस्य 24 दिनांके मतदानं भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने मतानां गणनापि भविष्यति। महाराष्ट्रस्य विशालः भागः प्रावृतवृष्ट्या निरन्तरं प्रभावितः अस्ति, यत्र मुंबई कोंकण प्रदेशयोः च व्यापकरूपेण जलाप्लवनं, भूस्खलनं, भवनानां पतनं, मार्गेषु रेलविमानयानेषु च महती बाधा दृश्यते। सम्पूर्णे राज्ये आदिवसं यावत् प्रचण्डवृष्ट्याः अनुवर्तनेन अधिकारिणः सजगतायां तिष्ठन्ति। अधिकारिणः नागरिकान् अनावश्यकीं यात्रां परिहर्तुं प्रार्थयन्ति। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः SDRF इत्यस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः शीघ्रं समन्वित कार्याचरणाय निर्देशोऽपि प्रदत्तवान्। प्रचण्डवृष्ट्या सम्पूर्णे कोंकणप्रदेशे बह्व्यः भूस्खलनानि अपि अभवन्, येन मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्गे यातायातः प्रभावितः। अत्रान्तरे भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्या सह केषुचित् स्थानेषु अत्यधिक अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। उत्तरी अरब सागरस्य केषुचित् भागेषु, गुजरात राज्ये, हरियाणा पंजाब राज्ययोः शेष भागेषु, राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रिमेषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृतचक्रस्य अग्रे गन्तुं परिस्थितिः अनुकूलास्ति इति विभागेनोक्तम्। गतरात्रौ विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां सर्बिया देशस्य नोवाक जोकोविच इत्यसौ रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिन इत्येतं पराजित्य पुरुष एकल स्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय क्रीडायां प्रविष्टवान्। अग्रिमायां प्रागुपान्त्य चक्रीय क्रीडायां जोकोविच इत्येषः फेलिक्स ऑगर अलियासिमे इत्यनेन, एलेजान्द्रे डेविडोविच फोकिना इत्यनेन सह सम्मुखी भूयात्। फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देश स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अद्य मेक्सिको नगरस्य एजटेका क्रीडांगणे मेक्सिको देशस्य विरुद्धं नाटकीयतया 3-2 इत्यंकैः विजयं प्राप्य इंग्लैंड देश फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं स्वाति देशपांडे।

0: अभी आपने सुना स्वाति देशपांडे और छाया चंद्राकर को।
1: ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
2: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वाति देशपांडे के स्वर में ये रचना।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रही थी, कलाकार थी स्वाति देशपांडे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारी अगली कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है शायद।

0: इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ?
1: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
12: कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन।

0: लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा।
2: निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाहर से भी लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं।

0: विद्यार्थियों और चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा।
1: निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बाहर से भी लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं।
0: कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि परियोजना के पहले चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में कैंसर भवन का विस्तार किया जाएगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि डॉ मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में डॉ मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मुख्यालय और सभी जिलों में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 10 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकासपरक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण महमरा एनिकट के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नदी किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने महमरा गांव जाने वाले मार्ग और पुलगांव स्थित छोटे पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। वहीं थनौद से लेकर अरसनारा तक नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों में जलजमाव के साथ ही निचली बस्तियों में स्थित घरों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण प्रशासन ने केलो बांध के 4 गेट खोल दिए हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर बलौदाबाजार जिले में महानदी पर रोहासी और अमेठी गांव को जोड़ने वाले एनिकट में 2 से 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके कारण अमेठी और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पलारी क्षेत्र और बलौदाबाजार से संपर्क टूट गया है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर संभाग के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। अति भारी वर्षा के साथ साथ सीमांत भारी वर्षा भी होने की चांस है, मतलब लगभग 200 mm से ऊपर भी 1-2 स्थानों पर होने की चांस है। बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के पश्चात येलो अलर्ट जो है वो सरगुजा संभाग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जारी किया है।
0: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी

0: ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि एक महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 7 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी एनआर में संचालित की जा रही है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में कल 7 जुलाई को संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। कोरबा पुलिस ने बीते 1 जुलाई को छुरी कला स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तीनों आरोपी पूर्व में हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं। जेल में ही उनकी दोस्ती हुई और रिहाई के बाद उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल और देशी कट्टे की मदद से लूट की योजना बनाई। नगरी प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन टिका ने आज भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता वितरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। और गनियारी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी होगा। यह घोषणा कल स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विख्यात पनवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं मिकी वायरसेस फिल्म का गीत।

कार्यक्रम में आप आपको सुनवा रहे हैं वी आर फ्रेंड्स। इस फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजी, संगीत आनंद मिरिंद का।

मिले ना मिले हम इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ें शान और श्रेया घोषाल की, साजिद वाजिद का संगीत, गीतकार जावेद अख्तर।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और सरू निगम की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है।

सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायणों की आवाज़ में अभी आपने सुना मेरे यार की शादी है इस फिल्म का ये गीत, और इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: लालजी भाई राम राम।
1: राम राम समित भाई और संगे संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम। लालजी भाई देख अब मानसून तो आ गए भाई और चारों कोती हरियाली बिगरत हावे। खेत और मैदान मल्ला देख के ऐसे लगत है मानो वो हरियर चादर ला ओढ़ ले हावे।
1: समित भाई सिरतोन बात है ये अभी दो दिन ले मनमाने झड़ी का लगे रही पानी है और पानी के अगोरा सबोल रही से चाहे कोई जीव जंतु हो पेड़ पौधा हो या किसान हो। और वैसे हमार किसान संगी मतलब तो विशेष कर अगोरा रही से अब पानी के गिरे ले काम है जोर शोर ले अपन चालू हो जाते। कई किसान संगवारी मन है जे मन है गर्मी में उपकी जोताई करके रखे रही से और कतको संगी मन हमार खुर्री बोय भी अपन करके रखे रही से उकर ले ये जो पानी है ना ये बड़ा वरदान असन हो गए।
0: हाँ लाल जी भाई देख और संगे संग का है कि जो हमार किसान संगवारी मन है गर्मी के मौसम में माटी के परीक्षण के काम गोबर खातू वर्मी कंपोस्ट डाल के माटी के तैयारी घलो करे रही ने। अब हमार संगवारी मन ला कोशिश ये करना चाहिए कि अपन खेती में कोनो रासायनिक खादों के प्रयोग झन करें है ना। जेकर ले का है जेकर प्रयोग ले माटी के उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाते और साथ ही साथ का है कि प्रदूषण के कारण हमर जो माटी ला मन परीक्षण करते रहते वो घरों खराब होए के डर बने रहते।
1: हाँ समित भाई अब ऐसे देख का है कि जो न किसान संगी मन है कई जन किसान संगी मन एकदम से रासायनिक उर्वरक के ऊपर अपन निर्भरता रखे रही से तो धीरे धीरे करके हम लोग कहीं न कहीं अपन प्राकृतिक खेती कोती फिर से जाए के जरूरत है ताकि जो माटी के उर्वरक शक्ति है वो बाँचे रहे और जो हमारे रासायनिक उर्वरक है ओला हम धीरे धीरे करके ओकर उपयोगिता ला कम करन। आजकल हमन देखथन कि एकर ले का है प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़त है ना। जेती देखबे तेती हर बूता में प्लास्टिक के उपयोग होते हैं। अब प्लास्टिक के जरिए से हमार खेती किसानी के संगे संग जो हमारे मवेशी है सब बड़े है हानिकारक हो जाते हैं।
0: और देख ऐसे लाल जी भाई कि प्लास्टिक ला हमन ये कह सकथन कि खेत ला धीरे धीरे करके मारते
1: सही बात है
0: ना? वो शांत रह के हमार खेत ला पूरा तरीका ला खत्म कर देते। अगर यह एक बार माटी में चले जाए तो ये बताए जाते कि 500 साल तक घलो गले नहीं। और देख प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव ले माटी खराब होना एकर ले हमार माटी में पानी और हवा नीचे कोती जाए ले रुकते जेकर ले हमार जड़ सड़ जाते।
1: हाँ
0: और देख इमे का होते कि जो केचुआ होते वो केचुआ घलो मर जाते और केचुआ का है हमार किसान संगवारी मन के मित्र हवे।
1: हाँ सिरतोन बात है भाई केचुआ का है कि माटी ले पोला करत रहते अब वही मर जही तो कहीं न कहीं माटी के जो पोलापन है वह कम हो जही और माटी में जो कठोरता है वो बढ़ी। अब एकरे संगे संग का है कि प्लास्टिक ले जो निकलैया माइक्रो प्लास्टिक कहे जाते और केमिकल है ये माटी के जो पोषक तत्व है ना वो लगातार बर्बाद करत है जेकर ले जो हमर जो भुइयां है अभी बतात रहे हूँ कड़ा हो जाते कही के अब कड़ा हो ही तो हम कहाँ फसल उगही गया तो वो बंजर हो जावत है और जो पैदावारी है वह घट जाते हैं जड़ के विकास रुक जाते हैं फसल है बने जितना बढ़ना चाहिए ओकर ले 30-40% कम हो जाते हैं। और संगे संग का है जो बीज है जेल हम सीधा बुआई करथन ओकर जो अंकुरण है वो घट जाते हैं मतलब हम देखन कि जितना बीज हम डालथन उसमें सबो बीज है पूर्ण रूपेण कहना चाहिए अंकुरण नहीं हो पाए।
0: और देख लाल जी भाई अभी तो बता रहे ना कि ये ला मवेशी मन घलो खा लेते तो जे जो मवेशी मन हमार खेत खलिहान में चारा चरे भर जाते वो गलती से प्लास्टिक ला खा लेते।
1: हाँ
0: ओकर बर का होते कि वो पेट में फंस जाते वो पेट में फंसे के बाद में उमर लग कई प्रकार के बीमारी घलो हो जाते और कई बार तो देखे में आते कि उकर ले उनकर मौत घलो हो जाते है ना। और जो दुधारू पशु मर रहते उनकर दूध तो घटते ही घटते और साथ में उमर लग घलो मौत के समस्या बरकरार रहते मतलब कभी भी उनकर मन के मौत आ जाते जो हमारा पता घलो नहीं चाहते। और जे प्लास्टिक ले का है कि जो नाली होते

0: हैं, है ना, वो बंद हो जाते, पानी भर जाते हमारे खेत खलिहान में, उकर से काहे कि हमारे जो फसल सड़ जाते।
1: ऐसे समित भाई कि प्लास्टिक है, चाहे खेत खार हो, गांव गली हो या शहर हो, सबो जगह पर नुकसान होते। जैसे हम लोग देखे मिलते जगह जगह शहर में पानी गिरिसता, जगह जगह पानी जाम हो जाते,
0: पानी जाम हो जाते,
1: और पता चलते कि जे जगह पानी निकले एक जगह है, वो जगह में मनमाने प्लास्टिक बन जा रहे ऐसे की, है ना। तो प्लास्टिक के अतका नुकसान होते, ये खातिर हमला सजग और होशियार होना चाहिए, और एक निदान और समाधान को ती हमला ध्यान देना चाहिए। सबले पहली तो हमला खेत के सफाई में विशेष ध्यान देना चाहिए। फसल के कटाई के बाद खेत ले मल्चिंग सीट, खाद के थैली, बीज के पैकेट, ड्रिप है, पाइप के जो टुकड़ा रहते, इला बीन के अलग कर देना चाहिए, ताकि वही प्लास्टिक है जो हमार माटी है ओला खराब झन करें।
0: और देख लाल जी भाई, ऐसे है कि जो प्लास्टिक मल्च के जो विकल्प रहते है ना, हम अल्लाह कहे कि ओकर कोती हलो ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पुआल, सूखा पत्ता, गोबर के खाद ले मल्चिंग करना चाहिए, जो कि गल के खातू बन जाते। कई बार ये देखे में आते कि अगर प्लास्टिक मल्च जरूरी हो जाते, कई बार होते ना कि एकर हम विकल्पे नहीं है, तो ऐसे में का है कि हम अल्लाह मोटा और का है कि यूवी स्टेबलाइज शीट के प्रयोग करना चाहिए, जो कि एक बार में आसानी ले निकल जाए।
1: समित भाई, संगे संग हम अल्लाह का है कि जैविक खाद जे है कि जिला हम गोबर खातु कथन या वर्मी कंपोस्ट या हरा खाद जे हर माइक्रो बढ़ाते और एकर उपयोग करना चाहिए। कुछ एक बैक्टीरिया जिसे जे धीरे ले माइक्रो प्लास्टिक ला तोड़े के काम करते, एकर साथ ही हम अल्लाह ड्रिप सिंचाई में भी सावधानी बरतना चाहिए। काबर की जो पाइप रहते वो टूट के माटी में रह जाते हैं, और जब हम एकर उपयोग करत हन तो वो जगह हमला ध्यान देना चाहिए कि बने वाला पाइप लान, ताकि वो टूट के उमें मत रहे, बने ISI मार्का देख करके पाइप लाना चाहिए, और जब बोला हम उपयोग के बाद एकत्र करथन तो ओ को बेरा हमला सावधानी रखना चाहिए कि कोनो जगह छूट तो नहीं गए है ना ऐसे करके।
0: हाँ लाल जी भाई, बड़ते सुघर जानकारी दे हवा। संगे संग देख का है कि जो हमारे खेती में काम करने वाला मजदूर होते ना, वो मन घलो कई बार देखे में आते कि खेत में गुटका, चिप्स के पैकेट, पानी के बोतल फेंक देते, ये हम अल्लाह नहीं करना चाहिए, बल्कि ओला एक डस्टबिन बना के उमें डालना चाहिए। कुछ एक सरकारी योजना जैसे कि प्लास्टिक मल्चिंग हो गए और वापस करे में सब्सिडी घलो मिलते हैं, ओकर कोती हम अल्लाह ध्यान देना चाहिए, ओकर बारे में पता करना चाहिए। और सबले जरूरी बात है कि हमन कोशिश ये करन कि प्लास्टिक ला खेत में जाए ले रोकन, है ना। काबर की बोलते है ना कि रोकथाम ही एकर सबसे बड़े इलाज हवे,
1: इलाज हवे। हाँ हाँ, अब देख ऐसे है समित भाई कि हमार जो दिनचर्या है एमे हमन हा लिखरी पिखरी बर प्लास्टिक के झिल्ली के उपयोग ला करत रथन। अब एकर बर जैसे हम कोई बाजारे जाए के या किराना दुकान जावत हन तो अपन थैली लेके जान, है ना, कपड़क थैली है या जूट के जो थैली आते झोला आते एला लेके जान, तो काफी हद तक कहना चाहिए कि हम अपन तरफ से कुछ सावधानी रख सकथन, है ना। और कहे जाते कि सावधानी ही बचाव है, है ना। तो समित भाई, गोट बात आगू करबो, फिर अभी सुनथन ये संदेश।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: समित भाई,

0: शायद अभी 2 दिन ले मनमाने पानी गिरत रही थे और उकर पहली चाहे पिए के पानी की बात करन तरिया डबरी की बात करन सब अटा गिरी है से और वो समय ऐसे लगत रही से कि कहाँ पानी मिली पानी नहीं गिरी का हुई ऐसे कहीं है ना।
1: अब देख ऐसे है कि ठंडक तो आ गई है मौसम में और साथे साथ कहा है कि अषाढ़ के मौसम खलो चालू हो गए तो सुनथन एक सुग्गर गीत जे में स्वर हवे छाया शर्मा और साथी मन के।

0: समित भाई अभी अषाढ़ महीना के स्वागत करत सुनत रहन ये सुघर गीत जिला स्वर देरी से छाया शर्मा और साथी मन है। अब ये गीत में जो हमर वर्षा के और खेती किसानी का आनंद है ना वो हम मन ला एकदम भर के रख दी सती और देख ऐसे है कि किसान संगवारी मन के जो शंका रही थे ओला हमन अपन कार्यक्रम के माध्यम ले दूर करे के प्रयास करथन और एकर खातिर क्रम होते आज के सलाह त आज इमें आप मन भर लेके आए हन अश्वगंधा और एलोवेरा के खेती और ये विषय में जानकारी देवत है डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन जिला दुर्ग और इकर संगोट बात करें हूँ मैं यानी लाल जी साहूगर। किसान संगी हो हम अपन परंपरागत खेती ल तो करबे करथन संग में अतिरिक्त आमदनी पर औषधि पौधा के लिए जुड़े हुए खेती करन ते हमर बर बड़ लाभ के हो सकते ऐसने आज हम जानबो अश्वगंधा और एलोवेरा के खेती के बारे में और एकर संबंध में जानकारी दे खातिर हमर बीच विशेषज्ञ है डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन दुर्गले। डॉक्टर साहब के हमर कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
1: राम राम किसान भाइयों।
0: डॉक्टर साहब सबले पहले ये बताते हो कि औषधि पौधा में अश्वगंधा और एलोवेरा के क्या महत्व है?
1: औषधि महत्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा का पौधा डायबिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसका पाचन तंत्र में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके खाने से आजकल बालों में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो बालों का कालापन बढ़ सकता है और याददाश्त बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज़्यादा सेवन करते हैं अश्वगंधा तो उसमें नींद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एलोवेरा, तो एलोवेरा का उपयोग जो है इसका अर्क जो है बड़े स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियां हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीर यौनकारी का मतलब है त्वचा को युवा रखने वाली क्रीम, उसमें एलोवेरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल, और सुखदायक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं हर्बल दवाओं में इस्तेमाल करके।
0: डॉक्टर साहब हमर यदि कोनो किसान संगी मन एकर खेती करना चाहते तो उकर शुरुआत करे बर सबले जरूरी होते माटी के, तो कैसन प्रकार के माटी के और कैसन प्रकार के जलवायु के जरूरत होते इला बताते हो?
1: छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है जहाँ इसका औषधि खेती सफलतापूर्वक किया जा सकता है, तो अश्वगंधा के लिए जो मिट्टी की उपयोग करने की बात की जा रही है तो वो है बलुई दोमट मिट्टी, और आप बात करेंगे एलोवेरा की तो एलोवेरा में रेतीली दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे जगह पे इसका खेती करना अच्छा माना जाता है।
0: तो जैसे कि अपन एलोवेरा या अश्वगंधा के हम खेती करत हन तो हमें कौन कौन से प्रमुख किस्म होते जो ज़्यादा लाभ के रहते इला बताते हो?
1: अश्वगंधा का प्रमुख किस्म की बात करें तो है जवाहर अश्वगंध 20 एंड जवाहर अश्वगंध 134, ये उच्च क्षारी किस्म है, ये जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से निकली है। इसका पौधे का जो है कद बहुत छोटा होता है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और एलोवेरा की बात करें तो IC 111271 और AL1 हाइब्रिड प्रजाति की जो वेराइटी है ये देश के हर क्षेत्रों में इसका उगाया जा सकता है इसको।
0: तो ये तो बहुत बढ़िया बात बताया आप मन है। तो जैसे कि हम एकर खेती करत हन तो सबले प्रमुख आवश्यकता होते बीज के, तो ये बीज हमला कहाँ ले मिलही और का एकर खातिर शासन के कोनो योजना चलत है जिला अनुदान के माध्यम से हमर किसान संगी मन ले सकते हैं?
1: हाँ, शासन के तरफ से बहुत सारी योजना चलती है औषधि पौधा उगाने के लिए, और इसका जो बीज कृषि विज्ञान केंद्र जो वहाँ के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं किसान भाई वहाँ संपर्क कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जो स्थित है वहाँ पर भी इसका बीज मिल जाता है।

0: और वहाँ भी नहीं मिलता है तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वहाँ से, और वन औषधि पौध बोर्ड जो है वहाँ से भी आप इसका पौधा प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई लोग। और इसका जैसे अनुदान की बात कर रहे हैं तो सरकार जो है 30-70% तक इसमें अनुदान देती है, वहाँ से सहायता मिल सकता है किसान भाइयों को। जैसे नेशनल आयुष मिशन है, ये एक अनुदान हो गया, और राज्य औषधि पादप बोर्ड, और इसके साथ साथ जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, यहाँ से सरकार की तरफ से किसान को अनुदान की सहायता प्राप्त हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम खेती करत हन एलोवेरा और अश्वगंधा के, तो हमें का खाद डालना चाहिए और कतेक मात्रा में डालना चाहिए, इला विस्तार ले बताते हैं।
0: जैसे अश्वगंधा फसल को ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अश्वगंधा की फसल के लिए बुआई के पूर्व 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट, 30 kg नत्रजन जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं, और 30 kg फास्फोरस तथा 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है उसको देना चाहिए। और एलोवेरा की बात करें तो इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए अंतिम जुताई के दौरान 15 से 20 टन सड़े गोबर की खाद जो है उसमें डाल देनी चाहिए, जिससे कि मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है।
1: खाद उर्वरक के बाद बात आते हैं सिंचाई के, तो यदि हम जैसे सिंचाई करत हन तो कब कब कतेक मात्रा में हमला सिंचाई करना चाहिए, का पानी भर के रखना ठीक रहते कि वो लोग पानी ले खाली कर देना चाहिए, ला बता।
0: अश्वगंधा के लिए बात करें तो यदि बारिश वाले दिन है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, 1-2 बार जीवन रक्षक सिंचाई करना चाहिए। 10-15 दिन में एक बार सिंचाई किसानों को कर देना चाहिए अगर अश्वगंधा में कर रहे हैं तो। वहीं बात करें आपका एलोवेरा में, तो बिजाई जब बीज डालते हैं उसका कंद डालते हैं तो उसके तुरंत बाद एक सिंचाई करनी चाहिए, और आवश्यकता रहने पर अगर आवश्यकता लगता है कि सिंचाई करना है तो सिंचाई करना चाहिए, अर्थात उसकी बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं है।
1: तो ये एलोवेरा अश्वगंधा के जो प्रमुख गुण हैं इला बताते हो।
0: अश्वगंधा ज़्यादातर जैसे कमजोरी शरीर में आ रहा है या तनाव है किसी प्रकार का, तो उसमें अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही साथ शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इसके आप जड़ या बाजार में टैबलेट भी मिलते हैं, इसको आप सेवन कर सकते हैं। और बात रही एलोवेरा की, तो एलोवेरा जैसे आप देखे होंगे गांव में या शहर में भी आजकल एलोवेरा का जो गुदगुदा पार्ट होता है पौधा पार्ट का, पौधे का पार्ट जो होता है गुदगुदा पार्ट, उसको लोग जो है उसके गुदे को खाते हैं सुबह सुबह। वो घुटने के साथ साथ आपका मधुमेह रोगी जो है, जिसको आजकल डायबिटीज शुगर की वो है, शुगर की बीमारी जिसको है, उसमें इसको लाभ मिल सकता है।
1: जैसे कि हम एलोवेरा या अश्वगंधा की खेती करत हन तो यहू में तो रोग राई लगत हुई, तो कौन कौन से रोग लगते हैं और एक उपचार बर का करना चाहिए ला बताते हो।
0: इसमें अश्वगंधा में पत्तों पर धब्बा बनना, ये जो है फंगस या विषाणु द्वारा रोग लगता है, इससे बीमारी फैलती है। और इसके रोकथाम के लिए 30 दिन बाद डाइथेनियम 45 का छिड़काव करना चाहिए 15 दिन के अंतराल पर, जिससे कि इसमें जो पत्ते पर धब्बे वाला रोग है उसे निजात पाया जा सके। उसके साथ ही साथ नए पौधे का गलना, ये भी लगता है इसमें अश्वगंधा में। इसकी बीमारी के रोकथाम के लिए बीज रहित बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए या निमास्त्र जैसे जैविक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप एलोवेरा में कर रहे हैं तो एलोवेरा में तो बहुत इसमें रोग वगैरह की दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर इसमें रोग का कुछ है तो जब मिट्टी सूख जाए तो इसमें धीरे धीरे गहराई तक पानी दें, जिससे छोटे छोटे जो छिद्र हैं ना वो बंद हो जाए और जो फंगल डिजीज है नष्ट हो जाए या ना हो करके आप इरिगेशन करके इसको रोग से निजात पा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रोग का प्रॉब्लम नहीं है एलोवेरा में। इसमें यही है कि अगर अधिक मात्रा में आप पानी देते हैं तो पौधा मर जाता है, या बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में लगाते हैं तो भी इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है एलोवेरा का।
1: तो जैसे अपन अश्वगंधा और एलोवेरा की बात करें तो एक कतेक दिन में तैयार हो जाते हैं, और एकर जो तुड़ाई है या कटाई है या तैयारी कहना चाहिए इला कैसे रिकीमले करना चाहिए इला बताते हैं।
0: जैसे अश्वगंधा की पैदावार की बात करें तो अश्वगंधा जो है आपका 160 से 180 दिन में तैयार हो जाता है। कटाई इसका जो है सूखे मौसम में करना चाहिए, जब पत्ते इसके सूख जाएं, इसके फल संतरी कलर के हो जाएं, तब इनको हाथों के द्वारा या मशीनों के द्वारा बिना इसके जड़ को नुकसान पहुंचाए उखाड़ा जाता है। और एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा की जो खेती है साल में कभी भी कर सकते हैं, इसका जल्दी अभी करते हैं जून

0: में जुलाई में लगाते हैं इसका, लेकिन अगर ठंडे वाले जगह नहीं है तो कहीं कभी भी कर सकते हैं। और इसका उपज जो है, पैदावार इसका 4 से 6 महीने में इसका तैयार हो जाता है गूदा।
1: जैसे हम भंडारण के बात करें या बाजार व्यवस्था के बात करें तो ये कैसे टाइप से हमारे किसान संगी मल्ला हासिल हो ये ला बता।
0: बाजार व्यवस्था में अश्वगंधा हो चाहे एलोवेरा हो, अगर कोई फार्मर उसको उगा रहा है अपने खेत में तो सबसे पहले अच्छा है उसके लिए कि वहाँ की जो नज़दीकी मंडी है वहाँ पर उसको सेल करना चाहिए, और उसके साथ साथ जहाँ औषधि दवाई बढ़ रही है उसको वहाँ पर संपर्क करके, वहाँ पर अधिक मांग होती है दवाइयों की, औषधि पौधों की, तो वहाँ पे जाकर बेचे। अगर वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इसकी बिक्री संभव है, किसान भाई को वो जरिया अपना के अपना आमदनी बढ़ा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जात जात हमारे किसान संगी मल्ला और का संदेश देना चाहो ताकि वो मन एलोवेरा अश्वगंधा की खेती को थी अग्रसर हो सके।
0: मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाइयों की ऐसी जगह रहती है जहाँ पर वो कोई खेती नहीं कर सकते हैं, हल नहीं चल सकता है, या कहीं कोना किनारा बचता है, तो ऐसे जगह पर अगर किनारे किनारे या ऐसे छायादार जगह है तो वहाँ पे ये औषधि पौधे आसानी से लगाकर उसे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, कालमेघ हो गया, ये सब जो भी जितने भी औषधि पौधे हैं ये नम छायादार की जगह आराम से उग सकते हैं। काली हल्दी हो गया, ऐसे औषधि पौधों को आसानी से वो उगा सकते हैं जहाँ वहाँ पर धूप कम पड़ रहा हो या बंजर जगह हो, वहाँ पे एलोवेरा वगैरह करके खेती वो आसानी से अपने आय को दुगुना कर सकते हैं फसल, मुख्य फसल के साथ साथ।
1: तो डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, आप हमर बीच आए, हमर किसान संगी मल्ला बहुत सुघर अकन जानकारी देव, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: संगवारी हो, अभी सुनेन क्रम आज की सलाह। इमें आज आप मन भर लेकर आए रहे अश्वगंधा और एलोवेरा की खेती, ये विषय में जानकारी देवत रही ने डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा, सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साकरा पाटन जिला दुर्ग, आउ आप सन गोड बात कर रही समर भाई लालजी साहू है।
1: समित भाई, अब बेरा हो गए हेलो किसान वाणी की सूचना देके, तो संगवारी हो अवैया मंगलवार यानी कि काली 7 जुलाई 2026 के प्रसारित होइया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही बरसात के मौसम में आवारा पशु मन के प्रबंधन, और ये विषय में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमर स्टूडियो में विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर पदमचंद जैन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार रायपुर, और आप मन के जिज्ञासा और शंका समाधान पाए खातिर हमर फोन नंबर है 400-3482 400-3483 400-3484। रायपुर के स्टडी कोड है 0771। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हुई 7 जुलाई 2026 यानी कि काली बिहनिया बेरा 11:30 ले 12 बजे के बीच में, और ये कार्यक्रम के प्रसारण घलो कल मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाए। आप मन के जानकारी खातिर हमर फोन नंबर एक बार और बता देथन, हमर फोन नंबर है 400-3482 400-3483 400-3484, और रायपुर के स्टडी कोड है 0771। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग काली बिहनिया बेरा 11:30 ले 12 बजे के बीच करे जाए। हमला आप मन के फोन कॉल के इंतजार रही, सूचना यही मेर सिरावत है।
2: और लाल जी भाई, अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के, तो हमार आज के प्रश्न है अश्वगंधा और एलोवेरा के प्रमुख किस्म के नाम बताते हो। प्रश्न एक बार फिर सुन लो, अश्वगंधा और एलोवेरा के प्रमुख किस्म के नाम बता दे।
1: और समित भाई, अब बता दे थन पाछू हफ्ता आज के दिन पूछेगे सही जवाब के, सही जो प्रश्न रिस होकर उत्तर ला। प्रश्न ऋषि की केला के पौधा ला हवा ले गिरे ले बचाए बर देसी उपाय का होते, जेकर सही जवाब है एक सा आकार के बांस तैयार करके पौधा ला सहारा देना चाहिए। और सही जवाब देवैया संगवारी मन के नाम बता दे समित भाई।
2: देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हव्य रजक, तन्नु रजक, ग्राम नागर कोहला रे जग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़।

0: नौकिले, ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, ग्राम बठेनाले, बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, राजेंद्र, मनहरण वर्मा, बंटी वर्मा और मुरली वर्मा, गर्रा पार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू, राकेश साहू, संबलपुर जिला कांकेर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, मदनपुर कवर्धले श्रवण कुमार साहू, योगेश्वर साहू, राहुल साहू, नवगढ़ कटाईले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा वर्मा, शारदा वर्मा, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजबीए, तन्मय गजबीए, राधिका गजबीए, बेबी अनिष्का, सही जवाब देवैया जम्मो संगवारी मल्ला, गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: और समित भाई, आज जिसे कि हमन प्रश्न करें ओकर खातिर हमन ला ईमेल आईडी बता देना चाहिए, तो राय आज के प्रश्न 23@gmail.com, ये ईमेल में आप जो है आज के प्रश्न के सही जवाब लिख करके भेजू। समित भाई, अभी हमन गोट बात करते रहन पानी के, है ना, जब पानी मनमाने आते तो हमला वो सोच नहीं रहा है कि अवैया समय में का हो ही पानी नहीं रहता,

0: तेजस्वी यादव, मदनपुर कवर्धले श्रवण कुमार साहू, योगेश्वर साहू, राहुल साहू, नवगढ़ कटाईले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा वर्मा, शारदा वर्मा, डोंगरगांवले राष्ट्रपाल गजबीए, तन्मय गजबीए, राधिका गजबीए, बेबी अनिष्का, सही जवाब देवैया जम्मो संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: और समित भाई, आज जिसे कि हमन प्रश्न करें ओकर खातिर हमन ला ईमेल आईडी बता देना चाहिए, तो राय आज के प्रश्न 23@gmail.com, ये ईमेल में आप जो है आज के प्रश्न के सही जवाब लिख करके भेजू। समित भाई, अभी हमन हा गोट बात करते रहन पानी के, है ना, जब पानी मनमाने आते तो हमला वो सोच नहीं रहा है कि अवैया समय में का होई पानी नहीं रहता, और जब यदि गर्मी में तरिया नरवा सब सुखा गिरी से, पानी के जल स्तर कम हो गिरी से, तब हमला लागत रही से कि पानी बचाते, है ना। तो आज हमला बेरा है, जैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग के बात करथन, तो ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग या छोटे छोटे उपाय करके पानी के जो है बचत करन, या जैसे नरवा है, नदिया है, इमें बांध बनाया जाए, जेकर ले का है कि पानी जो है रुक ही और जो जल स्तर है वो बाढ़ी, और जल स्तर बाढ़ी तो जो गर्मी है उमें हमला पिए बर शुद्ध पानी मिल सकते हैं। तो यही सब भावना ले जुड़े हुए गीत सुनथन, जिला स्वर देहे चतुर राम साहू, कांति यादव और गीता भट्टर।

0: अभी सुने ने सुगर गीत जे में स्वरी से चतुर राम साहू कांति यादव और गीता भट्ट के। अब हुआ थे जाए के बेरा तब बता देता काली के कार्यक्रम। काली चौपाल में आज के बाद के अलावा हुई हेलो किसानवाणी और गीत संगीत तो होबे करी त देवो विदा जम्मो संगवारी मल्ला समित गुप्ता और
1: लाल जी साहू के
0: राम राम, राम।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी, आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म सुजाता का गीत, मजरू के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

मौसम को भी। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उर्मिल वढेरा।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थी उर्मिल वढ़ेल। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कल नॉटिंगम में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से, तथा इंग्लैंड और नॉर्वे ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गॉफ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और तीरंदाजी विश्व कप का चौथा चरण कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा।

0: तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की एक शानदार उपलब्धि के साथ, जिसने सातवीं बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया।
1: And it's going to be brought up in not the greatest of ways for England, but Australia will take it. And in the backyard of their oldest foe, at the home of

0: Raptors claim their seventh World T20 title.
1: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर महिला T20 विश्व कप के फाइनल में महिला क्रिकेट के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने आई। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। टीम ने 11वें ओवर तक 70 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। यहां से कप्तान नेट साइबरब्रंट ने फ्रेया कैंप के साथ 5वें विकेट के लिए 55 गेंदों में 80 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ब्रंट 53 गेंदों में 58 रन और कैंप 28 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहीं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में यह मुकाबला जीत लिया। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद बेथ मुनी और फोएब लिचफील्ड ने 67 गेंदों में 100 रन की साझेदारी करते हुए इस अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत कर दी। मुनी ने 49 गेंदों में 64 और लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। एलिस पेरी ने अंत में नाबाद 13 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को उसका रिकॉर्ड 7वां T20 खिताब दिलवाया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: तो वर्ष 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में 2026 भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच कल नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से पीछे है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की मैन्स इन ब्लू के लिए ये मैच में बहुत कुछ दाव पर रहेगा। और इस मैच और क्रिकेट के मैदान की ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, कल जब भारतीय टीम उतरेगी नॉटिंगम में तो क्या कुछ दाव पर रहने वाला है इस टीम के लिए?
3: शक्ति, अगर कल भारत ये मैच हार जाती है तो आयरलैंड की तरह ही ये मुकाबला, ये सीरीज भी भारत अपने नाम नहीं कर पाएगी। भारत के पास इस मुकाबले को, इस सीरीज को ड्रॉ करने का ही मौका बस बचेगा। अगर हम बात करें विश्व कप जीतने के बाद से लगातार भारत का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। पहले आयरलैंड से 2-0 की हार मिली, फिर इंग्लैंड से पहला मैच बारिश के कारण धुल गया और दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो अब तीसरे मैच में भारत के पास जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर हम बल्लेबाजी क्रम में बात करें जो कि कल खेल सकती है, उसमें युवा वैभव सूर्यवंशी होंगे जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, अभिषेक शर्मा हैं, ईशान किशन होंगे, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे टीम में हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो टीम बदलाव भी कर सकती है। शक्ति, संजू सैमसन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था विश्व कप में, उसको प्लेइंग 11 में फिर से वापस ला सकती है। लेकिन भारत की असली चिंता बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी है, जिन्होंने लगातार डिसअपॉइंट किया है। चाहे हम आयरलैंड सीरीज की बात कर ले या फिर हम इंग्लैंड सीरीज की बात कर ले, दूसरे अगर T20 की भी बात करें तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था गेंदबाजी से। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई काफी महंगे साबित हुए थे, जिसके कारण भारत श्रृंखला में पीछे है।
2: जी बिल्कुल, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल टीम की नजर हर हालत में जीत दर्ज करने पर होगी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। प्रशांत, प्रशांत कप्तानी तो श्रेयस अय्यर के हाथों में है, लेकिन क्या नए बदलाव के साथ ये टीम उतरेगी जिम्बाब्वे में?
3: इस टीम में शक्ति फिनिशर रिंकू सिंह जिन्होंने विश्व कप खेला था भारत के लिए, उनकी वापसी हो रही। इनके अलावा प्रिंस यादव जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। IPL में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन था, जो जिनको टीम में शामिल किया गया, जिनमें प्रिंस यादव हैं, यश ठाकुर हैं, अशोक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। वहीं अशोक शर्मा ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की थी IPL में, जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया। वहीं हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। और इसके अलावा अगर इंग्लैंड दौरे पर अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जिनको मौका मिला है, उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए शामिल नहीं किया गया टीम में। विकेट कीपिंग का जिम्मा जो है वो नए खिलाड़ी प्रभ सिमरन सिंह को सौंपा गया, जिनकी तारीफ हमेशा युवराज सिंह भी करते रहे हैं उन्होंने। और उनके साथ विश्व के नंबर एक बल्लेबाज T20 में ईशान किशन को भी टीम में जगह दी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है शक्ति कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को टीम में नहीं शामिल किया गया है। और श्रृंखला की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को ये श्रृंखला खेली जाएगी।
2: जी बिल्कुल प्रशांत, इन तमाम नामों के बीच में श्रोता एक नाम और सुनना चाहते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज का हिस्सा हैं?
3: बिल्कुल, वैभव को इस सीरीज में लगातार टीम में शामिल किया गया है। शक्ति,
2: तो बिल्कुल उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी वापस अपने IPL की फॉर्म को बरकरार रखते हुए जिम्बाब्वे में भी नजर आएंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा, वहीं सुबह 5:30 बजे अमेरिका की भिड़ंत बेल्जियम से होगी।

0: इससे पहले इंग्लैंड और नॉर्वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
1: इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज सुबह एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लिश टीम ने मैक्सिको को 3-2 से हराया। मैच का पहला गोल 36वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से जूड बेलिंगहम ने किया। इसके ठीक बाद 38वें मिनट में बेलिंगहम ने फिर गेंद को गोल कोस्ट में पहुंचाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया। हालांकि मैक्सिको ने जल्द ही मुकाबले में वापसी की और क्विनोन्स ने 42वें मिनट में मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। मैच के 60वें मिनट में इंग्लैंड को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में बदलकर टीम की बढ़त को 3-1 से कर दिया।
2: England coming again, it's Harry Kane and Bellingham again, 2-2 minutes for England, who are in Mexican dreamland, it's England's King Kane who strikes again for the Three Lions.
1: मैच के 69वें मिनट में राउल जिमेनेज ने मैक्सिको के लिए एक पेनल्टी को गोल में तब्दील किया। इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका और इंग्लैंड की टीम अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल रही। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच के 79वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने नॉर्वे की ओर से मुकाबले का पहला और 90वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई।
2: He has nailed it for Norway, their greatest day, their mightiest hero.
1: इंजरी टाइम में पेनल्टी पर नेमार जूनियर ने ब्राजील के लिए पहला गोल तो दागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गोल नेमार के करियर का आखिरी गोल साबित हुआ और उन्होंने मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 वर्षीय नेमार के नाम ब्राजील की तरफ से सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में खेले कुल 130 मुकाबलों में 80 गोल किए जबकि 59 असिस्ट भी किए। 2012 में ओलंपिक में रजत पदक और 2016 ओलंपिक में ब्राजील को स्वर्ण पदक दिलाने में नेमार ने अहम भूमिका निभाई थी। अब क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और फुटबॉल के बाद अब रुक करते हैं टेनिस कोर्ट का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के फ्लोवियो कबोली ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को हरा दिया है। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के टेलर फिट्स का मुकाबला कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्किव तथा चेकिया के जीरी हेलेका का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। बुल्गारिया के गिग्रोव दिमित्रोव का मुकाबला ब्रिटेन के आर्थर फेरी से होना है। महिला सिंगल्स में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने चेकिया की मारी बोकोजवा को 6-4 से हराया, जबकि इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने फिलीपींस की एलेक्सेला को 6-4 से हराया। इससे पहले कल नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गोफ ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
3: विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में कल कई अहम मुकाबले खेले गए। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोमान सफीउल्लिन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इटली के यानिक सिनर ने जापान के शिंतारो मोचीजुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिमे ने स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1 से हराया, जबकि जॉन लेनार्ड स्ट्रफ ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने हमवतन ईवा जोविक को 4-6, 6-3, 6-1 से हराया। जापान की नाओमी ओसाका ने आर्याना संबालेका को 6-2, 7-6 से हराया। एक अन्य मुकाबले में अमरीकी कोको गॉफ ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनेसिक को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया। यूक्रेन की मार्ता कोत्स्यूक ने अमेरिका की एशलीन क्रूगर पे 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो विश्व का ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट अब अपने क्वार्टर फाइनल की दौड़ में प्रवेश करने जा रहा है, जहां से इसका रोमांच अब हर दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण की, जो कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा। तो आइए जानते हैं इस चरण में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी फाइनल चरण और अंकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे।
4: भारत के 16 सदस्यीय दल की अगुवाई धीरज बोमो देवरा, कुमकुम अनिल मोहोड़ और ज्योति सुरेखा वेन्नम कर रहे हैं। चार चरणों में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप का ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इस वर्ष के आखिर में मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। मैड्रिड मीट में 51 फेडरेशन

0: फेडरेशनों के 392 रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाज 7 से 12 जुलाई तक पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बम्मोदेवरा, यशदीप संजय भोगे, नीरज चौहान और अतानु दास शामिल हैं। महिलाओं के रिकर्व इवेंट में सबकी नजरें कुमकुम अनिल मोहोड़, कीर्ति शर्मा, अंकिता भकत और दीपिका कुमारी पर रहेगी। कंपाउंड वर्ग में ज्योतिका सुरेखा महिलाओं की टीम की अगुवाई करेंगी। उनके साथ चिकित्सा तानी पार्थी, पृथिका प्रदीप और परनीत कौर भी टीम में हैं। पुरुषों की कंपाउंड टीम में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, साहिल जाधव, कुशल दलाल और ऋषभ यादव शामिल हैं। भारतीय तीरंदाजों ने इस वर्ष तीरंदाजी विश्व कप में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ऐसी टीम जहां के अधिकतर खिलाड़ियों की नजरें होंगी कि किस तरह एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी को और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। और एक और टूर्नामेंट शुरू होने को है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां 8 जुलाई से 5वीं भारतीय ताइक्वांडो पुंसे और पैरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे सिक्किम संवाददाता ने बताया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य से 24 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
2: More than 24 athletes from Sikkim will compete in the 5th India Taekwondo Pumse and Paranational Championship. Sikkim's athletes will participate in a range of events including Freestyle Team Pumse, Junior Team Pumse, Under 17 Freestyle Pumse Female. The team will lead by coaches Ganga Pradhan, Saroj Gurung, Ugen Gurung and Sunil Limbu. Medal winners will be shortlisted for the final India National Camp Selection Trials, with successful athletes earning the chance to represent India at the 2026 World Taekwondo Pumse Championship in Chuncheon, South Korea. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok.
1: और अब बात करते हैं भारतीय पहलवानों की, खासकर युवा पहलवानों की, जिन्होंने थाईलैंड में अंडर 20 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अपना अभियान 20 पदकों के साथ समाप्त किया। इनमें 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में भारत की महिला टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि भारत की पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने तीसरा स्थान अर्जित किया। महिला प्रतियोगिता के अपने सबसे बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इसमें सामने आई हैं, जिसमें से 10 में से 9 महिला पहलवानों ने भारत के लिए पदक जीते, जिसमें प्रवीण ने 50 किलोग्राम, मुस्कान ने 53 किलोग्राम, काजल ने 76 में अपनी अपनी कैटेगरी के स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि प्रवीण ने उज्बेकिस्तान की शेकिस्ता शोजान रोवा को 13-2 के बड़े अंतर से हराते हुए ये पदक अपने नाम किया था। अगर पुरुषों के फ्रीस्टाइल की बात की जाए तो वहां पर सुमित कुमार लक्ष्मण ने 70 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशिया

0: और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का

0: रथ यात्रा का पावन पर्व है उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और

0: लघु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद

0: हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his 3-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake 3-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है जहां आरा, राजेंद्र किशन के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, UPI, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की

0: वित्तीय सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं, एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: क्योंकि ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फ़ोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: पकड़ा जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
0: जी, रवि।
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
0: जी।
3: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना

0: चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करे और ये इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
1: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
2: जी।
1: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
2: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
2: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
2: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको OTP भेजते हैं। आपके फ़ोन पे OTP आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे OTP आता है। कोई भी OTP तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी OTP को मत

0: को गुनाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: सभी को नमस्कार
1: जी,
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल की 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: ठीक है, शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ?
3: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी? नमस्कार।
3: नमस्कार,
1: नमस्कार जी, नमस्कार
4: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
4: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
3: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
3: स्टूडेंट्स
4: जी,
3: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं

0: तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड, बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम, आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज, सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
1: नंद कुमार जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराते हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर, लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू किया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
1: जी बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में दसवीं क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फ़ोन जो होता है बहुत सिंपल फ़ोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फ़ोन से, की फीचर फ़ोन से किया, उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा

0: करते हैं उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस

0: ने बता दिया है। और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो
1: साइबर फ्रॉड
3: 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: यह बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज़ इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।

0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है, 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम शुरू का सफर।

मौसम के बदलते मिजाज और रिमझिम फुहारों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको पहले सुनवा रहे हैं उसने कहा था फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और तद महमूद की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल सलील चौधरी का संगीत। ईमेल और पत्र भेजने वाली हमारी श्रोता साथी हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, हजदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, सिहामालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा, भीमघोज दरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी देवांगन, जतिन और जयंत, बागभरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा सेन, कौशल सेन, अडार नानगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, भूपेश, चचेरी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज मरावी, पीपल और सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा, खपरी कला मुंगेली से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश नेहरू, मेमित्रा से राज और सारिका वैष्णव, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति, रिचा, वाटापरा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचना कद मुंदड़ा, वाटापरा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम रावत, रायपुर से ताम्रध्वज साहू, बेमित्रा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, भलेसर महासमुंद से बलराम सेन, छगन सिन्हा, द्वारिका सिन्हा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

रिमझिम की ये प्यारे प्यारे गीतों के साथ होगा आपका और हमारा भी साथ, ऐसे ही कुछ मधुर गीतों के साथ। तो अगला गीत धूल का फूल इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं साहिर के बोल एंड दत्ता का संगीत, और इस गीत के लिए आवाज़ें महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की। फरमाइश आप सभी की, अमरपुर पिंडा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, दिव्यांश श्रीवास्तव,

गलोड से पुनू राम साहू, राज तेजेश्वरी साहू, राजश्री राजवीर साहू, समडिल नवापार से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति गुप्ता, राधे दीपक गुप्ता, गंडे पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन और कुमारी साहू, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी वर्मा, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरिका, गणेश, कार्तिक राउत, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास, रानी मानिकपुरी, इंदौर से नारायण खर्जे, ललिता खर्जे, गणेश और कार्तिक खर्जे, नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी, जतीन, जयंत देवांगन। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं धूल का फूल इस फिल्म का ये गीत।

एक ही रास्ता अब आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म का गीत आवाज़ लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, मजरूह के बोल हैं, संगीत हेमंत कुमार का। फरमाइश आप सभी की, कोदवा गोडान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी मरावी, गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण यादव, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत प्रेकू, विनय ठाकुर, कोरदा से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार, शिव कुमारी वर्मा, सिमगा जिनवाड़ी रेडियो श्रोता से सविता जैन, मोनिका जैन, भिलाई से रोआ बंधा से सुशील जैन, सेया कल्पना, सौरभ जैन, अहिवारा दुर्ग से पेंटर डबल कुमार धीवर, जतीन हेमनराज, बाबू धीवर, अरमरी खुर्द दुर्ग से चूरामन लाल वाडे, जैनी वाडे, त्विशा अक्षत वाडे, खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना प्रेरणा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले और साथियों की स्वरों में, कैफी आजमी के बोल। इस फिल्म का नाम है अनुपमा। और पत्र और ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गंडई पंडरिया से दरिया नमल, अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, सिमगा से लवकुश सिंह, प्रहलाद आदित्य आशीष सिंह, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, नासिर खान, अयास खान, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सिंह, शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्र

कर भगवान चंद्रा कर, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिश्री, चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव से ऋषभ और राम सहोदर, और फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी, यामिनी और मुस्कान साहू।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत SD बर्मन का है, फिल्म का नाम है काला बाजार। और फरमाइश आप सभी की, जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ अतापार से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार साहू, बुरगन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांत प्रजापति, नर्मदा धाम सुरसली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव, भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश और आरती यदु, रायपुर से राजेश अम्बादी, शशिकला और पूजा अम्बादी। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं बरसात की रात फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिर के बोल रोशन का संगीत। फरमाइश आप सभी की, उमरखेड़ से अभिजीत कवाणकर, राही सरिता प्रिंस, एकांश कवाणकर, बाटापारा से चोवाराम वर्मा, मुकेश दुलारी वर्मा, दुर्गा वर्मा, भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान, पटपर डोंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार, कविता जयंती ध्रुव, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत सारथी, खैरागढ़ से देवेंद्र कांति, गौरी सक्षम, दरसिवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, बाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन यादव, रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी उचल वर्मा, दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी रेखा, मोतीलाल साहू, भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू चिंटू झेरिया, और गातापर से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, बिंदेश्वरी नागेश्वरी साहू। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का ये यादगार गीत।

पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर अभी आप सुन रही थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद आमिर खां का गाया राग दरबारी कान्हा में ख्याल। इसमें प्रस्तुत हैं दो रचनाएं, विलंबित और द्रुत दोनों ही रचनाएं छपताल में निबद्ध है। बोल हैं जब से जनक परी मोरी आली। तबले पर संगत की है रमजान खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमीर खां का गाया राग दरबारी कानरा में ख्याल, तबले पर संगत की रमजान खाने। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित

0: चेत वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla.